गए गंगाराम हम मेरा तुझे भी सलाम मेरा तुझे भी सलाम हम तेरे हैं गुलाम हम तेरे हैं गुलाम।

0: गए गंगाराम हमने रा तुझे भी सलाम मेरा तुझे भी सलाम।
1: क्लासिक नगमे आपके अपने लायका गोल्ड पर।

0: लाइका गोल्ड
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
2: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
1: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
2: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
2: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
1: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000
2: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757 Greens by Danube Prime location
1: High appreciation
2: In Dubai
3: Are we there yet?
4: Okay, bags are here Where's the taxi? I can't load the map
3: Relax, I've booked the Uber already
4: How? My roaming isn't even working yet
3: I switched to Simzy before we left London
4: Simzy? Since when are you the tech expert?
3: Since I decided I want a stress-free holiday
5: Don't let roaming ruin your holiday spirit Get the Simzy eSIM for affordable dates in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
6: T's and C's apply.
7: Like a gold par har raat ki yahi reel. Purane magar sada bahar geet.

सुनो, मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो मैं रोशनी किए देती हूँ।

0: लाइका गोल्ड।
1: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान,
2: देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग,
1: डेजर्ट सफारी,
2: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
1: साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
2: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
3: साउथहॉल ट्रेवल, at all protected.
4: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
5: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
4: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
5: And you didn't pay those massive roaming charges?
4: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
6: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
3: This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
7: Taza kare apni yaadein Leica Gold ke saath.

0: ये है लाइका गोल्ड।
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
2: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर।
1: इंट्रोड्यूसिंg ग्रीन्स बाय डैनियो, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
2: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन।
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स।
2: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी।
1: एंड द बेस्ट पार्ट, टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000।
2: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02 03963 5757। Greens by Danube, prime location,
1: high appreciation
2: in Dubai.
3: Packed for the trip? Gifts? Passport?
4: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
3: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
4: Simzy?
3: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
5: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
6: लाइका गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदा बहार गीत।

0: Laika Gold.
1: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
2: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Southall Travel.
3: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
1: Southall Travel can take you there.
4: Southall Travel, auto protected.
5: अपने बिजनेस को UK के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें Laika Radio Sales on 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk.
6: Laika Gold पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार गीत।

सो मैं विसर ना जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना आवे।

होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए।

है साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए अखरी।

तेरे भगत रसाले और केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो सी

जिव तिस दी वडियाई, जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म ना करना जाई, सो पातशाह साहिब नानक रहन जाई।

कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाथ जुग जुग एको वेस एक दूजी बोल लख होवें लख होवें लखवीस लख

0: मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने. दिस प्यारा वाला गाना इन द वोकल्स ऑफ मुकेश फ्रॉम द लवली मूवी आनंद. अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है अबाउट दिस मूवी. सो ऋषिकेश मुखर्जी एक्चुअली वांटेड टू कास्ट शशि कपूर एंड राज कपूर इंस्टेड ऑफ राजेश खन्ना एंड अमिताभ बच्चन फॉर दिस मूवी. हुआ यूं कि जनरली राज कपूर ऋषिकेश मुखर्जी को बाबू मोशाय बुलाते थे. यू नो दैट आइकॉनिक डायलॉग जो राजेश खन्ना कहते हैं बाबू मोशाय. वेल दैट वाज एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय राज कपूर कॉलिंग ऋषिदा बाबू मोशाय. है ना, ये एक इंटरेस्टिंग सी बात. आई एम वीर इन फॉर द लवली काजल ऑन योर फेवरेट रेडियो स्टेशन लाइक अ गोल्ड.
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
2: Gold breakfast with Kajal on Leica Gold.

0: book now. Visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
2: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
1: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
2: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915 or visit cashbackremortgages.co.uk.
1: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208-574-8410। दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
4: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
5: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
4: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
5: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
4: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
5: Exclusive radio partner, Lyco Radio Network.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 0208-839-0880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
9: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208-150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
10: When your daughter's wedding guest list is double-sided, enjoy every hand-clapping second of it. Be a step ahead with Barclays Premier, with our best savings rates. Barclays, backing your future. Eligibility criteria apply. T's and C's apply.
11: Across Greater London, this is Kajal on Breakfast.

0: कार इन द वोकल्स ऑफ द लवली द लेजेंड रफी साहब. क्या प्यारा वाला गाना है एंड आई लव द केमिस्ट्री बिटवीन देव साहब एंड नूतन. अच्छा ये गाना एक्चुअली कुतुब मीनार में पिक्चराइज किया गया था एंड दैट लवली यू नो वो जो प्यारा सा रोमांस था बिटवीन नूतन एंड देव साहब वॉज अमेजिंग. हैव यू वॉच दिस मूवी? ये गाना बहुत ही ज्यादा प्यारा है.
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Feel good hits in the sun with Leica Gold.

0: Hollywood Flashback with Kajol.
1: So a lot of you have got the answer right, but कुछ लोग हैं who are still struggling. तो मैंने सोचा कि एक और dialogue मैं इस movie से play करता हूँ, and then let's see how many of you guys get this answer. तो चलिए, the dialogue is just coming up. And here we go. So brace yourself.
2: नहीं होता फांसी के तख्ते पर, उसके साथ उस फंदे पर दम तोड़ता है उसकी बीवी का सुहाग, उसके बच्चों का भविष्य, उसके घर में बसने वाली एक एक खुशी, उसके आंगन में उतरने वाली एक एक किरण, सबको एक साथ फांसी हो जाती है। ठगराल साहब ने 75 आदमियों को नहीं, 75 परिवारों को फांसी दिलवाई।
1: Well, I'm sure अब तो आपने guess कर लिया होगा. Then message me and tell me कि ये movie कौन सी है.
0: Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now. Across Greater London, this is Kajol on Breakfast.

0: मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हसी, व्हाट अ प्यारा वाला गाना, आई लव द लिरिक्स। इतनी ब्यूटिफुली ये गाने को लिखा गया है, आई मीन जिस तरह से डिस्क्राइब किया गया है, दिस सॉन्ग इज एक्चुअली सॉन्ग बाय वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स रफ़ी साहब, एंड दिस सॉन्ग इज पिक्चराइज ऑन जीनत अमान, एंड आई थिंक ये गाना वो डिजर्व करती है बिकॉज शी इज गॉर्जियस। संजय खान ऑफकोर्स इज सिंगिंग प्रेजेस फॉर हर इन दिस सॉन्ग।
1: ये है लाइका गोल्ड ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
2: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: विजिट ट्रेवल हब world.com।
1: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
3: Celebrate Krishna Janamashtami in a truly vibrant way. Join us on Sunday the 30th of August from 2 p.m. to 8 p.m. at Navnath Centre, Printing House Lane, Hayes, UB3 1AR. Live music, Ramayan play, Ras Leela, delicious food, fun fair, shopping and free entry with free parking. Book a stall for your business before the 15th of August by calling Ramesh Shah on 07742 045 154. Exclusive radio partner Leica Radio Network. This ad is sponsored by Jamin Foods.
4: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
5: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
1: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
5: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
1: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 0192322724। बुक योर टेबल टुडे।
6: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
7: Discover Malta and Gozo with a Twin Center Island Escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
8: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Cool music for a super hot summertime on the Leica Radio Network.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: Be part of a historic grand opening.
0: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
1: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
0: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
1: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
2: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
3: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
2: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
3: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
2: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
3: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
4: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
5: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
4: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
6: हे दिस इज सैंडी शाह, ड्राइव यू होम एवरी मंडे टू फ्राइडे बिटवीन 4 एंड 7 पीएम विद द बेस्ट ट्यून्स, माइंड गेम्स एंड अ बिट ऑफ ये या वो, ओनली लाइक a gold.

0: तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत ना मैंने करनी थी, दिस प्यारा वाला गाना इन द वोकल्स ऑफ रफी साहब एंड सुमन कल्याणपुर फ्रॉम द सुपरहिट मूवी फर्स्ट जितेंद्र एंड बबीता. आई एम श्योर जितेंद्र एट दैट टाइम वाज इंडियाज आंसर टू जेम्स बॉन्ड. एकदम ही यू नो लाइक सस्पेंसी मूवी थी कि क्या हो क्या रहा है टाइप्स. वन मोर लवली ट्रैक दिस आवर बट यू स्टे ट्यून्ड बिकॉज आई विल बी विद यू नेक्स्ट आवर ऑन योर फेवरेट रेडियो स्टेशन लाइक अ गोल्ड.
1: Feel good classics all day. This is Like a Gold.

0: तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मिथवा, दिस प्यारा वाला गाना इन द वोकल्स ऑफ लता मंगेशकर एंड बबला फ्रॉम द सुपरहिट मूवी चांदनी. अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग बातें अबाउट दिस मूवी. सो द मूवी वॉज रिटन बाय, एक्चुअली द स्टोरी वॉज written by Kamna Chandra. Now she actually had written a Prem Rog. So Yash Chopra ne Vijay banayi thi 1988 mein, and that movie did not do well. So then Yash Chopra said that unka to genre romantic movies banana hi hai, and then he said let me make a nice romantic movie, and he really loved the story that Kamna Chandra made. But pata kya iska jo second half tha movie ka jo unhone likha tha, that was not something that Yash Chopra wanted. तो उन्होंने क्या लिखा था कि चांदनी की शादी ललित से होगी. ललित वॉज प्लेड बाय विनोद खन्ना. सो स्टोरी ये थी कि चांदनी की शादी विनोद खन्ना से हो जाएगी एंड देन दे विल हैव अ सन. बट देन यश चोपड़ा सेड नहीं, थोड़ा सा ड्रामेटिक होना चाहिए. एंड देन हैंस ऋषि कपूर गेट्स पैरालाइज इन दिस मूवी, एंड देन ऑफकोर्स शी गोज बैक टू ऋषि कपूर. इतनी प्यारी वाली मूवी थी ये. अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग सी बात है, दिस मूवी वॉज ओरिजिनली ऑफर्ड टू अनदर हीरोइन, नॉट श्रीदेवी. सो श्रीदेवी वॉज नॉट द फर्स्ट चॉइस. ये मूवी किसी और एक बड़ी हीरोइन को ऑफर की गई थी, बट देन शी रिफ्यूज द मूवी. नाउ यू मैसेज मी एंड लेट मी नो कि वो हीरोइन कौन थी.
1: WhatsApp message like a gold now on 0744 23 23 23. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: So your £1 in British sterling can get you up to 127.55 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai. Like a gold.
1: Like a gold. Like a gold. Traffic and travel.
3: Starting with Boston Road, that ongoing accident is continued with a closure south. It's actually become a police incident now from Uxbridge to Lower Boston Road. So congestion to Illinghurst with an ongoing closure there with queuing traffic. Now the M4 onto the elevated section, East Hayes to Brentford, 10-minute queues. Edgware Way, there's an accident at Broadfields Avenue westbound, so it's partially blocked and slow. And Logland Drive, this is through Whetstone. We've got emergency repairs between Totteridge Lane and also Hill Crescent, so no access both approaches. Shooters Hill Road slowing from Blackheath Common to Deptford Bridge, 15 minutes. And heading for Circle Line, earlier problem with points at High Street, Kensington, still severe delays. And that's the latest traffic and travel.
4: Honestly, I've been putting MTD off. First it was, I'll do it after this job. Then, after some grouting. After sorting the back of the van. After fish fingers and peas. And then I thought, no, just get it done.
5: Get MTD done simply with Sage for free. Just connect to your bank, we'll sort your transactions, then submit your update to HMRC. Search Sage MTD.
6: Like a gold.
7: This part of the show is brought to you by Durandar.
8: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
7: Mega blockbuster Durandar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
9: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना. परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापूजी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा. 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में. समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक. नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें. शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271.
10: Morning, a shopkeeper opens his doors.
11: Lights on, shutters up, staff ready.
10: But today's customers don't start on the high street.
11: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
10: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
11: They walk into your competitors.
10: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
11: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
12: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
13: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
12: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
13: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
12: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
14: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
15: Life doesn't always send a warning. A family matter, a property issue, an immigration concern, or a business dispute. When things feel complicated, Rack Law solicitors bring clarity, care, and trusted legal support. From family, property, and immigration to corporate law, your matters, our expertise. Call Rack Law solicitors on 0203 345 2000 or visit racklaw.co.uk.
16: 07300998823 नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
17: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
18: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK. इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
2: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
19: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: कह दूं तुम्हें या चुप रहो, दिस अमेजिंग सुपरहिट सॉन्ग इन द वोकल्स ऑफ किशोर दा एंड आशा भोसले फ्रॉम द सुपर डुपर हिट मूवी दीवार. अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, नीतू सिंह एंड परवीन बाबी. व्हाट अ लवली मूवी.
1: Like Extra podcast update.
0: So Laika Extra's latest podcast is on reinvention and entrepreneurship and insight into the banking sector. Deep and Minal discuss the reality and pleasure of those in the financial institutions. Laika Extra podcast available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple and major other streaming platforms.
1: Laika Extra.

0: Kajal's Morning Mantra, presented by Mantra Holidays, your friendly holiday partner for UK, Europe and other destinations. For your memorable holidays according to your taste and budget, call 0203-773-633 to book your dream holiday. This is Like a Gold. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
1: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
1: विजिट TravelHubWorld.com.

0: सबसे निराला
1: मैमस्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी.
2: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
3: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
4: Relax, I've booked the Uber already.
3: How? My roaming isn't even working yet.
4: I switched to Simsy before we left London.
3: Simsy? Since when are you the tech expert?
4: Since I decided I want a stress-free holiday.
5: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
6: T's and C's apply.
7: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best gara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
8: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ. आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद माणो. डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलिडेज. कॉल करो 0203-773-6333. मंत्रा हॉलिडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा.
9: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना.
10: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
9: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
11: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
12: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं. ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com. ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: Leica Gold Traffic and Travel.
1: Boston Road, it's a one-way street. This has been an ongoing police incident closure from Uxbridge Road to Lower Boston Road, causing some delays. Just do plan ahead. Now, the M4 Heathrow Spur Road, 10-minute queues before the tunnels into the terminals. Edgware Way, we've got an accident at Broadfields Avenue. It's causing it to be partially blocked. It's in the middle lane at the lights, so very slow. Longland Drive as well, through Whetstone, we've got traffic queued around emergency repairs between Totteridge Lane and Hill Crescent. And then heading for A2 Shooters Hill Road, 10-minute queues west at Deptford Bridge. Now, Mildmay, London Overground Line, operational incident, severe delays between Stratford and Richmond and also Clapham Junction. And that's the latest traffic and travel.
0: Yeah, like a gold.
2: Like a gold.
3: This part of the show is brought to you by Khatro Ke Khiladi on Colours TV. Khatro Ke Khiladi, every Saturday and Sunday at 8 PM on Colours TV.
4: खिलाड़ी लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर के फर्नीचर .co.uk पर जाएं।
5: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
6: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
7: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
8: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
9: Location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai.
11: Bhartiya Vidya Bhavan proudly presents the Summer Showcase 2026 at the iconic Harrow School on Saturday the 8th of August from 3 PM. Experience an unforgettable celebration of Indian classical music, dance and culture. Seats are limited, so book now at ticketsource.com/Bhavan. For details, visit bhavan.net or call or WhatsApp 07421 497541. Radio partners, Leica Radio Network.
12: Mum, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
13: Beta, you're not alone. For 5 generations, our family trusted one thing. Pure herbal care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
12: So where do we find something like that now?
13: Right here in London. Baidyanath Sidhayu Hair Oil, Shampoo and Toothpaste. Pure Ayurvedic, premium and made the way our eldest used it.
14: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
15: South Hall, Desi Swad ka asli adda aa gaya hai.
16: Bikaner wala parampara bhi.
17: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स। आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल UB2 4DB। कॉल 07795181001।
18: फ्रॉम सीनिक ब्रेक्स इन स्कॉटलैंड, द लेक डिस्ट्रिक्ट, डेवन एंड कॉर्नवॉल टू क्लासिक यूरोपियन जर्नीज अक्रॉस फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली एंड द नेदरलैंड्स, स्टार टूर्स टेक्स केयर ऑफ एवरी डिटेल इंक्लूडिंग इंडियन मील्स ऑन टूर। वेल प्लान्ड, कंफर्टेबल, ट्रस्टेड, दैट्स द स्टार टूर्स एक्सपीरियंस। कॉल 0208 900 23 23 or visit startours.co.uk.
19: Gold breakfast with Kajal on Leica Gold.

0: देखो मैंने देखा है एक सपना, दिस प्यारा वाला गाना इन द वोकल्स ऑफ लता मंगेशकर एंड अमित कुमार फ्रॉम द सुपरहिट मूवी लव स्टोरी. नाउ दिस वाज रिलीज्ड इन 1981 एंड ऑफ कोर्स राजेंद्र कुमार हैड प्रोड्यूस्ड दिस मूवी एंड उनके बेटे कुमार गौरव एंड विजेता पंडित डेब्यूड इन दिस मूवी. इतनी प्यारी रोमांटिक सी मूवी थी एंड आई लव द केमिस्ट्री बिटवीन द टू ऑफ देम. एंड ऑफ कोर्स कुमार गौरव बिकेम एन ओवरनाइट सेंसेशन. मेरी मम्मी कहती हैं कि इतनी फैन फॉलोइंग हो गई थी उनकी कि लाइक यू नो सब पागल हो गए थे. एंड आई थिंक उसके बाद ऐसी फैन फॉलोइंग आमिर खान की हुई थी व्हेन कयामत से कयामत तक रिलीज. एंड देन ऑफ कोर्स व्हेन कहो ना प्यार है रिलीज, दैट्स व्हेन पीपल वेंट क्रेजी अबाउट ऋतिक रोशन. आई एम वीर इन फॉर काजल ऑन द ब्रेकफास्ट शो ऑन योर फेवरेट रेडियो स्टेशन लाइक अ गोल. थैंक यू सो मच फॉर योर प्यारे प्यारे मैसेजेस एंड आई प्रॉमिस कि प्यारे वाले गाने विल कंटिन्यू कॉज मेरे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने इन माय गानों का पिटारा.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: So your £1 in British sterling can get you up to 127.55 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Leica Gold.
1: Leica Gold, traffic and travel.
3: Boston Road, one-way street through Hanwell. This has been an ongoing police incident this morning with a closure south from Uxbridge to Lower Boston Road. Traffic is coping okay though. M4 Heathrow Spur Road south, we've got delays before the tunnels into the terminals. And Longland Drive through Whetstone, traffic's also queued with a closure for emergency repairs between Totteridge Lane and Hill Crescent. Now, Edgware Way through Edgware, there's an accident at Broadfields Avenue westbound, partially blocked and queued. And the A2 Shooters Hill Road, there's delays of 15 minutes from Blackheath Common to Deptford Bridge. Now, the A3 West Hill, also slowing between Tibbetts Corner and Richmond Road, and Mildmay London Overground Line, operational incidents, severe delays continue. And that's the latest traffic and travel.
2: Ye hai.
4: Leica Gold.
5: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
6: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
5: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
7: Bhajan phenomenon ab London mein dhamake karne aa raha hai. Backstage siblings perform live for the very first time in the UK. Join the pioneers of bhajan jamming on Friday the 9th and Saturday the 10th of October at SKLPC Northolt. Ek sham soulful music, devotion aur energy ke naam. Tickets book kijiye on skLPC.com/BSS. Exclusive radio partners Leica Radio Network.
8: Bhartiya Vidya Bhavan proudly presents the Summer Showcase 2026 at the iconic Harrow School on Saturday the 8th of August from 3 PM. Experience an unforgettable celebration of Indian classical music, dance and culture. Seats are limited, so book now at ticketsource.com/Bhavan. For details, visit bhavan.net or call or WhatsApp 07421497541. Radio partners Leica Radio Network.
9: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
10: विजिट mantrahalidays.co.uk और कॉल 02030373633 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स Your travel mantra.
8: Celebrate Krishna Janamashtami in a truly vibrant way. Join us on Sunday the 30th of August from 2 PM to 8 PM at Navnath Centre, Printing House Lane, Hayes, UB3 1AR. Live music, Ramayan play, Ras Leela, delicious food, fun fair, shopping and free entry with free parking. Book a stall for your business before the 15th of August by calling Ramesh Shah on 07742 045 154. Exclusive radio partner Leica Radio Network. This ad is sponsored by Jamin Foods.
4: Dreaming of paradise?
11: Discover the Indian Ocean with Skylord Cruise and Holidays. Book exclusive Emirates holiday offers to Mauritius, the Maldives, Seychelles and Sri Lanka.
12: Choose from luxury beach escapes, family resorts and incredible multi-center holidays, all at exclusive prices.
11: Call Skylord Cruise and Holidays today on 01923883100. That's 01923883100.
12: At all protected.
13: What food make dinner plans? Thoda classy, thoda desi.
14: To IA Godfather and Co. Vivek House Bar and Kitchen.
13: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala se biryani tak, fresh bread and refreshing drinks. Har bite mein lajawab flavors aur vibe bilkul premium.
14: Friends, family ya special night out, ise yaadgar banaiye. Visit Vivek House Watford. Call 01923227274. Book your table today.
15: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
16: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
17: Laika Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Laika Gold aur online suno laikagold.com pe.
18: Artist of the week is brought to you by our new podcast Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: चांद जैसे मुखड़े पे, दिस प्यारा वाला गाना इन द वोकल्स ऑफ आर आर्टिस्ट ऑफ द वीक येसुदास. दिस सॉन्ग इज फ्रॉम द मूवी सावन को आने दो, अरुण गोविल एंड जरीना वहाब. दिस वॉज प्रोड्यूस एंड डायरेक्टेड बाय राजश्री प्रोडक्शन.
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: Another lovely romantic track in the vocals of Rafi Sahab and Lata Mangeshkar from the movie Taj Mahal. Enjoy this pyara wala gana on Like a Gold.

0: लाइका गोल्ड
1: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट ट्रेवल हब world.com
3: Anuj Chopra Foundation proudly presents An Evening of Elegance hosted by Anisa Nasir. Taiyar ho jaiye ek yaadgar shaam ke liye jahan ghazals milti hai Bollywood se.
4: Shaam chalne lage
3: With the legendary Anoop Chalota on Sunday, 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 p.m. Show starts 6 p.m. Ticket starts from £40. Book now at queens-theatre.co.uk. Radio partners Leica Radio Network.
5: 0730-99-8823. नोट किया किटी पार्टी बिजनेस मीटिंग कॉर्पोरेट इवेंट फैमिली ओकेजन बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को सर्विस एक्सेलेंट फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे विवेक हाउस वॉटफर्ड बुक ऑन व्हाट्सएप 07

0: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दिस प्यारा वाला गाना इन द वोकल्स ऑफ लता मंगेशकर एंड किशोर दा फ्रॉम द स्वीट मूवी सिलसिला. वेल द मूवी नॉट डू गुड ऑन बॉक्स ऑफिस, कहते हैं कि द मूवी वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम, बट बहुत ही प्यारी वाली मूवी है. डायरेक्टेड बाई यश चोपड़ा, अमिताभ बच्चन, रेखा, जया बच्चन, संजीव कुमार, इतनी ब्रिलियंट मल्टी स्टारर मूवी थी. एंड एक इंटरेस्टिंग बात अबाउट दिस मूवी, जितनी भी ज्वेलरी एंड यू नो द लवली साड़ीज दैट रेखा वॉज वेयरिंग, ये साड़ी उन्होंने खुद ही डिजाइन की थी. आई मीन शी इज सुपर क्रिएटिव एंड शी इज लुकिंग गॉर्जियस इन दिस मूवी, राइट?
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: So your £1 in British sterling can get you up to 128 Indian rupees, 371 Pakistani rupees, 450 Sri Lankan rupees, 165 Bangladeshi taka, 87 Afghan, 173 Kenyan shilling and approximately 1.34 US dollars.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Sounding better than ever in the sunshine. This is LIKA Gold.

चैन, दिस प्यारा वाला गाना इन द वोकल्स ऑफ किशोर दा, व्हाट अ लवली ट्रैक, राजेश खन्ना एंड तनुजा, अ सुपर रोमांटिक गाना. वन मोर ट्रैक दिस आवर और वक्त हो चुका है फॉर मी टू से बाय. वेल, हमें राई प्यार के फिल्म मिलेंगे चलते चलते. गिव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू रवि शर्मा, हुज अप नेक्स्ट. दिस इज लाइक

0: जतिन ललित के म्यूजिक पर 1997 की फिल्म खामोशी द म्यूजिकल से लिया था ये गाना, जिसमें मनीषा कोइराला थी और साथ में थे सलमान खान। और आप सुन रहे हैं आपका मन पसंद लाइक अ गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन मिडलैंड्स, जहां पर रितु शर्मा दे रही है आपका साथ, सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी। गुड मॉर्निंग।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो भाई हमारे बहुत सारे साथी हमारा साथ दे रहे हैं, और मिथुन पटेल आपका कहना है कि ये गाना बजाकर, खामोशी फिल्म का गीत बजाकर आपने तो मेरा दिन ही बना दिया। सच में ये गाना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है सुनने में, और इसमें कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़, इस गाने का म्यूजिक, ट्यून, सब कुछ मैं कहूँगी नंबर वन है। सो ये गाना चलिए आपको डेडिकेट करते हैं। थैंक यू विजय गुनोवा जी, स्वागत है आपका, आप हमारा साथ दे रहे हैं। थैंक यू मोशुमा, थैंक यू, कल आपसे मिलने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। कल दिनेश पोपट जी भी मिले, और कल संध्या भावसर आपसे भी मिलने का मौका मिला, और कल बहुत अच्छा लगा, बहुत ही शानदार नाइट थी रजवाड़ा जी की, रंजीत रजवाड़ा जी की, करूँगी उसके बारे में बात। लेकिन फिलहाल मौसुमा आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। थैंक यू रोहित साथ देने के लिए, थैंक यू मीना लखानी जी, हाय गर्मी, यस आजकल यही हो रहा है और लग रहा है ये गर्मी, तुम कब जाओगी, बहुत दिन यहाँ रह ली, अब जाओ, है ना। ऐसा मन हो रहा है ना गर्मी से कहने का। एनीवेज स्वागत है आपका। किरण जी एरो से हमारे साथ है, जासू जी स्वागत है आपका, थैंक यू, थैंक यू प्रज्ञा सोलंकी, सत्यनारायण सैनी जी भारत से, सहर जी, महेंद्र बजारिया जी, थैंक यू, एंड थैंक यू राजेश जी कहते, अरे क्या बात है, आज तो मनोरंजन विद ऋतु शर्मा है। सही कहा आपने, और आज आपको लगेगा कि लॉन्ग वीकेंड शुरू हो गया है, क्योंकि लोगों को मेरी आवाज से ही लगने लगता है कि वीकेंड की शुरुआत हो गई, और वैसे हो ही गई है, फ्राइडे तो है ही। तो चलिए आप हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू अर्जुन जी, एंड थैंक यू हमारे गिरीश जी भारत में प्रोग्राम सुन रहे हैं, एंड थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे एक बार फिर से मिलकर। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे, और आगे बढ़कर क्या करना है, सुन लेते हैं आज के प्रमुख समाचार।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: तो आज के प्रमुख समाचारों में सबसे पहले खबर आ रही है भारत से। संसद में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए कड़ा कानून पारित किया गया है, और इसके साथ ही राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन जो है विधेयक 2026 भी संसद में पास हो गया है। मध्य प्रदेश के स्थित भोजशाला विवाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जुमे की नमाज परिसर से सटी दरगाह की जमीन पर अदा करने की व्यवस्था की गई है। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली, NCR, UP, बिहार और गुजरात समेत 19 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम और लगातार बारिश के चलते अमरनाथ यात्रा को भी आज स्थगित कर दिया गया है। उधर महाराष्ट्र से खबर आ रही है, महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भिवंडी में एक 4 मंजिला इमारत ढहने से हादसा हुआ है, जिसमें राहत और बचाव कार्य जारी है। कुछ समाचार सुनवाते हैं आपको विदेशों से, देश विदेश की खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में हमास और अन्य सशस्त्र समूहों के पूर्ण निशस्त्रीकरण को लेकर एक 20 सूत्रीय समझौते की घोषणा की है। उधर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में कोयला खदान में मीथेन गैस के रिसाव से हुए धमाके में 32 से अधिक मजदूरों की मौत हो गई है, और कई अब भी वहां फंसे हुए हैं। पाकिस्तान स्थित ब्राड पीक पर्वत पर आए भीषण एवलांच, जो से कहा जाता है हिमस्खलन के बाद प्रसिद्ध पर्वतारोही निर्मल पुर्जा समेत 10 पर्वतारोही के लापता होने की आशंका जताई जा रही है। आपको कुछ खेल समाचार सुनाते हैं। वेटलिफ्टिंग में लवप्रीत सिंह ने 110 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है, और महिलाओं की डिस्कस थ्रो कंपटीशन में सीमा ने ब्रॉन्ज पदक अपने नाम किया है, और भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे ने अपने करियर को विराम देने की घोषणा की है, जिस पर BCCI और उनके साथी खिलाड़ियों ने उन्हें शानदार करियर के लिए शुभकामनाएं दी हैं। यही थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त हुए।
1: ये है Laika Gold Tasty Track of the Hour, brought to you by Coca Noodles.

0: क्या धुन बनाई है आरडी बर्मन ने, और ये थी जे ओम प्रकाश की पहली फिल्म एज ए डायरेक्टर। और ये फिल्म क्या हिट हुई, उसके बाद तो जे ओम प्रकाश ने अपनी सारी फिल्मों के नाम ए से ही शुरू किया, क्योंकि उन्हें लगा कि जब वो ए नाम अपनी फिल्म का रखेंगे तो फिल्म हिट हो जाएगी। और उनका ये फॉर्मूला काम भी किया, उन्होंने ज्यादातर जो फिल्में ए से बनाई हिट रही। पता नहीं क्या उनका विश्वास था, लेकिन ये काम जरूर करा। ये गाना आप सबने पसंद किया है, थैंक यू साथ देने के लिए। शेखर आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। थैंक यू मानसी जी, थैंक यू विजय गुनवा जी, आप हमारे साथ हैं, थैंक यू देने के लिए साथ। तोची जी थैंक यू, थैंक यू निर्मला जी, नरेंद्र पांचाल जी स्वागत है आपका। वियाना मेरिल सोनी जी हमारे साथ हैं, फरीदा गुलाम अली हमें सुन रही हैं, एंड प्रज्ञा भी हमारा साथ देने के लिए आ चुकी हैं। तो बस साथ यूं ही देते रहिए, क्योंकि एक बजे तक गीतों का सिलसिला ऋतु शर्मा के साथ यूं ही चलता रहेगा। गुड मॉर्निंग।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स, गुडनेस इन एवरी बाइट, ट्राई इट टुडे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
0: तो आगे बढ़ने से पहले, अगला गीत सुनवाने से पहले आपको हम याद दिला दें कि भाई आजकल बहुत चर्चाएं हैं दिवाली स्टोरी की, और दिवाली स्टोरी का एक बड़ा ही गाना, प्यारा गाना है जिसका बड़ा लंबा इंतज़ार है, लक्ष्मी देवी सॉन्ग, जो हम आपको सुनवाएंगे कल सैटरडे को 11:30 बजे लाइका रेडियो ग्रेटर लंदन पर। अनुज राडिया जो 10 से 1 प्रोग्राम करते हैं, वो इस गाने को 11:30 बजे बजाएंगे, तो आप ज़रूर सुनिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और इस सॉन्ग को गाया है लेजेंड कविता कृष्णमूर्ति, जिसमें म्यूज़िक है राहुल रैनाडे का, और इन गीत को लिखा है समीर सामंत ने। दिवाली स्टोरी का सभी को इंतज़ार है। आपको बता दें कि स्टेज पर ये शो दिखाया जाएगा संडे 27 सितंबर को एट ओवो अरीना वैमली में, और आप टिकट्स खरीद सकते हैं एट diwalistory.com पर जाकर। टिकट खरीदने के लिए आपको जाना होगा diwalistory.com पर।
2: ये है
3: Like a Gold Holiday Breaks are brought to you by Southall Travel।
0: और अगर हॉलिडे जाने की सोच रहे हैं तो साउथॉल ट्रैवल का नाम याद रखिए। दुबई के लिए बड़ी अच्छी डील्स चल रही हैं, उन्हें फ़ोन कीजिए 02085748410 पर। इट ऑल प्रोटेक्टेड है सब कुछ, जल्दी कीजिए।
3: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
4: Hello, I'm NPC, and I'm not interesting like everyone else. I have no original thoughts. I'm just a background character. I'm usually used to call someone boring, which isn't very nice. So if I pop up in your kid's feed, it might be time for a chat. Search Tesco Mobile Online Safety to find out how to start the conversation at home.
5: We know your family matters most. That's why we're happy to be your second most important network. Tesco Mobile. It pays to be connected.
6: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays, हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
7: TravelHub, best service with unbeatable price.
6: At all protected.
7: Visit TravelHubWorld.com.
8: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on diwalistory.com.

0: जी हाँ बिल्कुल, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में ये सुपरहिट गाना आपने सुना दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, और इस दीवाने की आवाज़ ने हज़ारों लोगों को तब भी दीवाना बनाया था और आज भी करोड़ों लोग इस आवाज़ के दीवाने हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब आज ही के दिन इस दुनिया को छोड़ कर गए थे, 31 जुलाई 1980 में, सिर्फ 55 साल की उम्र में, इतनी छोटी सी उम्र में इस दुनिया को छोड़ कर चले गए। बहुत ही दुख की बात थी, लेकिन आज उनकी पुण्यतिथि है और उनके बहुत सारे चाहने वाले हैं जो मुझे याद दिला रहे हैं कि ऋतु आज रफ़ी साहब की पुण्यतिथि है। यस, मैं जानती हूँ, ये गाना मेरी ओर से उनके सारे फैंस के नाम पर। और रफ़ी साहब की तो आवाज़ ऐसी है, उनके गाने ऐसे हैं कि कोई भी शो किसी भी रेडियो स्टेशन पर पूरा हो ही नहीं सकता जब तक कि रफ़ी साहब की आवाज़ में कोई गीत ना बजे। और हमारे यहाँ तो यही हाल है, उनकी आवाज़ के बिना कोई शो पूरा हो जाए ऐसा हो नहीं सकता। तो लीजिए, रफ़ी साहब को याद किया ये गाना सुनवाकर, और ये गाना उनके सारे फैंस को भी डेडिकेट किया।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 पाउंड के बदले में आपको मिलेंगे 128 भारतीय रुपए, 372 पाकिस्तानी रुपए एंड 165 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is 97.97 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley. This is Leica Gold.
4: This part of the show is brought to you by Khatron Ke Khiladi on Colors TV. Khatron Ke Khiladi every Saturday and Sunday at 8 PM on Colors TV.
5: Khatron Ke Khiladi.
6: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
7: Here's how it works: when you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share, and we give the rest back to you as cashback.
6: No fee, no gimmicks, real money back, a better rate, and cashback from a broker that costs you nothing.
7: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again: 0208 706 0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
6: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
8: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
9: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
8: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
9: गारंटेड
8: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
9: फोन 0208574 8410।
8: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
10: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में, समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 0793027।
11: Clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
12: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.

जी हाँ, आप सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। 11:04 हुए हैं और ये समय है चिंतन का। चिंतन यानी कि आज का विचार। अब देखिए, कल से अगस्त का महीना शुरू हो जाएगा और अगस्त का महीना हम सब जानते हैं आजादी का महीना है। अगस्त के महीने में ही भारत को आजादी मिली थी और इस आजादी को पाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी समुदाय के हों। सबका देश एक ही था, भारत, हिंदुस्तान, और सभी सिर्फ एक मकसद लेकर आगे बढ़ रहे थे कि हिंदुस्तान को आजाद कराना है, भारत को आजाद कराना है। आज कुछ ऐसा ही किस्सा मैं आपको सुनाने वाली हूं, क्योंकि आज का दिन कुछ खास है। लेकिन आज के दिन के किस्से की शुरुआत करने से पहले जरूर आपके साथ चार लाइनें शेयर करूंगी कि किसी ने कितना खूबसूरत लिखा है कि शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, कभी वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा। इस ख्वाब को पूरा करने में हजारों लाखों लोगों ने हंसते हंसते अपनी जान की बाजी लगा दी। आज एक ऐसे ही इंसान को मैं याद करने जा रही हूं चिंतन में, क्योंकि आज का दिन उनकी शहादत का दिन है। आज पंजाब और हरियाणा समेत देश के बहुत सारे हिस्सों में स्वतंत्रता संग्राम के इस महान नायक की शहादत और बलिदान को नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। और मैं बात कर रही हूं शहीद ऊधम सिंह जी की। आज का दिन महान क्रांतिकारी शहीद ऊधम सिंह जी की शहादत का दिन है। उनके जीवन से जुड़ा एक किस्सा आज सुनाने वाली हूं चिंतन में। और ये जो किस्सा है शहीद ऊधम सिंह जी के जीवन से जुड़ा, केवल प्रतिशोध का नहीं बल्कि 21 साल के लंबे धैर्य, राष्ट्रभक्ति और उस अटूट कसम की कहानी है जिसने उस समय की पूरी ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। आप सबने जलियांवाला बाग के बारे में सुना होगा और उस खौफनाक रात के बारे में भी सुना होगा। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जब जनरल डायर ने निहत्थे मासूमों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई, तब ऊधम सिंह करीब 20 साल के थे। जानते हैं, वे उस मैदान में लोगों को पानी पिलाने का काम कर रहे थे। जब गोलियां थम गईं तो चारों तरफ लाशों का ढेर था। रोती बिलखती माताओं और बच्चों की चीखों के बीच ऊधम सिंह उस रक्त रंजित जमीन पर खड़े थे। उन्होंने वहां की खून से सनी मिट्टी अपने हाथ में ली और उस समय वो मंजर देखकर उन्होंने एक कसम खाई। उन्होंने कसम खाई कि जब तक जलियांवाला बाग के इस नरसंहार के मुख्य गुनहगार माइकल ओ डायर को उसकी सजा नहीं दे देता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हम जानते हैं कि बदला लेना आसान होता है अगर आवेश में तुरंत किया जाए, लेकिन ऊधम सिंह का संकल्प 21 साल तक ठंडा नहीं पड़ा। वो जानते थे कि पंजाब का जो तत्कालीन गवर्नर माइकल ओ डायर
अब वापस लंदन चला गया है। 21 साल बाद भी उनके मन में वही गुस्सा था और उनका वही निर्णय था। और जब उन्हें पता चला कि जो माइकल ओडायर, जिसने जालियांवाला हत्याकांड करवाया था, वो वापस लंदन चला गया है, और उनको पता था कि लंदन पहुंचना और वहां उस तक पहुंच बनाना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, एक उस जमाने में एक आम भारतीय के लिए ये बिल्कुल एक नामुमकिन सा काम था। लेकिन शहीद ऊधम सिंह के मन में एक डिटर्मिनेशन था। उन्होंने सोच लिया था कि मैं बदला लेकर जरूर रहूंगा, और उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। ऊधम सिंह ने अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आजाद रखा, एक ऐसा नाम जो भारत के हर धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख और देश की आजादी की सोच को एक साथ जोड़ता था। वो कारपेंटर बने, मैकेनिक बने, यूरोप के कई देशों में भटके, कई तरह की नौकरियां की और आखिरकार अफ्रीका के रास्ते लंदन पहुंचे। 21 सालों में उनके बाल भी सफेद हो गए थे, शरीर का ढांचा बदल गया था, लेकिन उस रात ली गई कसम का एक एक शब्द उनके दिल में जल रहा था। 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में एक मीटिंग हो रही थी। माइकल ओडायर मंच पर खड़ा होकर भाषण दे रहा था। ऊधम सिंह ने एक मोटी किताब के पन्नों को रिवाल्वर के आकार में काटकर अंदर अपनी पिस्तौल छिपा कर रखी थी। वो चुपचाप हॉल में घुसे और जब ओडायर अपना भाषण खत्म करके आगे बढ़ा तो ऊधम सिंह ने बिना किसी हिचकिचाहट के पिस्तौल निकाली और सीधे दो गोलियां ओडायर के सीने में उतार दी। ओडायर वहीं ढेर हो गया और जलियांवाला बाग का न्याय 21 सालों के बाद पूरा हुआ। और सबसे भावुक बात यह है कि गोली चलाने के बाद कैक्सटन हॉल में भगदड़ मच गई। ऊधम सिंह चाहते तो भीड़ का फायदा उठाकर बड़ी आसानी से भाग सकते थे, लेकिन वो अपनी जगह पर शांत खड़े रहे। उन्होंने अपने हाथ ऊपर किए और मुस्कुराते हुए खुद को ब्रिटिश पुलिस के हवाले कर दिया। और जब अदालत में उनसे पूछा गया कि उन्होंने भागने की कोशिश क्यों नहीं की, तो उन्होंने बड़े गर्व से कहा, मैं भागने नहीं आया था, मैं दुनिया को ये बताने आया था कि भारत की आत्मा को तुम गोलियों से दबा नहीं सकते। मेरा काम पूरा हो चुका है, अब मुझे फांसी का कोई डर नहीं। और आज ही के दिन 31 जुलाई 1940 को लंदन के पेंटोन विलेज जिले में शहीद ऊधम सिंह को फांसी दे दी गई। वो मुस्कुराते हुए फंदे पर झूल गए। उनके लिए ये काम करना बहुत कठिन था। शहीद ऊधम सिंह जो 20 साल की उम्र के थे, उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली, 21 साल तक एक एक शब्द उन्होंने अपने दिल में संजोए रखा, वो धीमे नहीं पड़े। वरना समय बीत जाने के बाद इंसान में प्रतिशोध की जो इच्छा होती है वो कम हो जाती है, लेकिन शहीद ऊधम सिंह ने अपने लोगों को, बेकसूर लोगों को मरते हुए देखा था, और वो आग उनके दिल में कम होने की बजाय दिन पर दिन बढ़ रही थी। ये किस्सा बिल्कुल सच है, इतिहास में दर्ज है। और इस किस्से से हमें पता चलता है कि जब आपके मकसद में सच्चाई और देश के प्रति निस्वार्थ प्रेम हो ना, तो समय चाहे कितना भी लग जाए, लक्ष्य हासिल होकर ही रहता है। ऊधम सिंह का जीवन धैर्य, साहस और अमर देशभक्ति का एक अद्वितीय उदाहरण है। आज उनकी शहादत का दिन है। चिंतन में आज उनकी बात ना की जाती तो शायद अच्छा नहीं होता, इसलिए सोचा क्यों ना उस महान शहीद को आज याद किया जाए, चिंतन में उनकी शहादत को सलाम किया जाए।

0: ए वतन ए वतन, चिंतन हमको तेरी कसम तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। और ये लाइनें बोलकर हजारों लोगों ने देश की खातिर अपनी जान की बाजी लगा दी। और आज ही के दिन शहीद उधम सिंह को फांसी पर लटकाया गया था। शहीद उधम सिंह की जो ये कहानी थी, ये किस्सा था, वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जब मैं ये बातें बता रही थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि किस तरह से उनका 21 साल का धैर्य, अटूट संकल्प और देश के प्रति निष्ठा किसी को भी भावुक और प्रेरित कर सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये काम किसी अंधे गुस्से में नहीं, बल्कि बेहद शांत दिमाग, जिम्मेदारी और न्याय की भावना से किया था। वाकई में ऐसे लोग असल हीरो होते हैं। और आज के चिंतन में हमने शहीद उधम सिंह जी को याद किया। आपके बहुत सारे मैसेजेस मिले हैं, थैंक यू सो मच साथ देने के लिए। आपका भी कहना है कि यस, इमोशनल हो गए हैं, कुछ को रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। यस, यही होता है अपने देश के प्रति प्यार। जब हम किसी ऐसी बात को सुनते हैं, हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं, हम जुड़ जाते हैं। और वाकई में इस तरह की जब भी कोई कहानी, कथा, किस्से सुनते हैं तो दिल में एक ख्याल आता है कि उस जमाने में लोगों ने किस तरह से जीवन जिया होगा, कितनी मुश्किलातों का सामना किया होगा। हम तो सिर्फ सुनते ही हैं, उन लोगों ने इसे जिया होगा। मेरी ओर से उन सभी को सैल्यूट। और बस यही कहूंगी, जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय हिंद। यही था आज का चिंतन। चलिए लौटते हैं बैक टू बैक गीतों की ओर, लेकिन उससे पहले थैंक यू कहना चाहती हूँ रानी जी स्लाव से, निर्मला जी, रंजन जी, प्रतिभा जी, महेंद्र बाजारिया जी, मंजू कामभी, थैंक यू आपके मैसेज के लिए। हिमांशु पटेल जी, फतेह पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए। लीला बैन, थैंक यू फॉर द चिंतन, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, जरूर पढ़ूंगी। थैंक यू कहना चाहूंगी मैं परेश व्यास जी आपको, सहर जी, वियाना से अनिल सोनी जी, राजीव पटेल जी, जासू जी, महेंद्र पटेल जी क्रॉयडन से, अर्जुन जी, थैंक यू आपके मैसेज के लिए। और इसके अलावा हरीश खत्री जी, जैस्मिन, विजय घुनोवा, राजकुमार मानसी जी, सपना एंड परेश व्यास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आंटी जी एंड कुछ नाम है जिन पर नंबर, कुछ नंबर है जिन पर नाम नहीं है, सो थैंक यू साथ देने के लिए। बढ़ते हैं आगे और माहौल को थोड़ा मस्ती भरा बनाते हैं। इस फ्राइडे सुनवाते हैं आपको ऐसा ही प्यार भरा, मस्ती भरा गाना।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो £1 आज आपको देगा 127.85 भारतीय रुपए। लेकिन याद रखिए, ट्रांसफर करवाना होगा via SBI branch online by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Like a gold.
3: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
4: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
3: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
5: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
6: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापूजी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271 लंदन वाले। चलो ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
3: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
2: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
3: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
2: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
3: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
2: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
3: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
2: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
7: Packed for the trip? Gifts? Passport?
8: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
7: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
8: Simzy?
7: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
9: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com.
10: T's and C's apply.
11: Hare Krishna. Celebrate Krishna Janamashtami in a truly vibrant way. Join us on Sunday the 30th of August from 2 p.m. to 8 p.m. at Navnath Centre, Printing House Lane, Hayes, UB3 1AR. Live music, Ramayan play, Ras Leela, delicious food, fun fair, shopping and free entry with free parking. Book a stall for your business before the 15th of August by calling Ramesh Shah on 07742 045 154. Exclusive radio partner Leica Radio Network. This ad is sponsored by Jamin Foods.
12: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ। आप पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे, जहां मड़शे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर, सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो। डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज। कॉल करो 02037737333। मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा।
13: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड, और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
14: Looking for great value on quality flour? Head to your nearest quality food store today. Falcon Chakki Atta 10 kg is now available for an amazing price of just £7.99. Perfect for soft rotis, chapatis and everyday cooking. Don't miss this fantastic offer. Falcon Chakki Atta 10 kg, only £7.99, exclusively at quality food stores.
15: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
16: Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at LeicaRadio.com and the Leica Radio mobile app. Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
17: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
18: TravelHub.
17: At all protected.
16: Leica. Leica Gold. The perfect soundtrack for a British summer heatwave.

0: जी हाँ बिल्कुल, ये था लता जी और किशोर कुमार की आवाजों में गीत जिसे आपने सुना आपके मनपसंद रेडियो से, जहाँ पर इस समय आपका साथ दे रही हूँ मैं, और मुझे कहते हैं ऋतु शर्मा। गुड मॉर्निंग।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: तो चलिए अगला गीत मैं आपको महेंद्र कपूर की आवाज में सुनवाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आपको हम बताते चलें कि आप इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर सकते हैं विद सनातन इवेंट्स। 20% ऑफ आपको मिलेगा टिकट्स पर टू दिवाली स्टोरी अंटिल 15th अगस्त। यूज कीजिए कोड लाइका 20 अंडर द प्रमोशन कोड एट diwalistory.com। और आपको बता दें कि एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स हैं इस शो के लाइका रेडियो नेटवर्क। तो यानी कि बेसिकली 15 अगस्त तक अगर आप टिकट्स बुक कराते हैं दिवाली स्टोरी के, तो आपको 20% का ऑफ मिलेगा जब आप यूज करेंगे कोड लाइका 20। तो जल्दी कीजिए, देर किस बात की है।
2: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
3: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: अगर इस तरह का सॉफ्ट रोमांटिक म्यूजिक हो और महेंद्र कपूर की आवाज़ हो तो अंदाज़ा लगाना कठिन नहीं होता कि ये म्यूज़िक पंडित रवि शंकर शर्मा का ही है, जो कि है हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने म्यूज़िक डायरेक्टर। खूबसूरत गाना जिसे आप सभी ने पसंद किया, खासतौर पर हमारे महेंद्र बजारिया जी कहते हैं बहुत खूबसूरत गीत है। चलिए गीत मैं आपको डेडिकेट करती हूँ।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो बहुत सारे साथी मुझे पिक्चर्स भेज रहे हैं कि कल रंजीत रजवाड़ा के शो में गए थे और बहुत मजा आया। यस, बहुत मजा आया, कल मैं भी वहां पर थी और उन्होंने क्या गाने चुन चुन कर गाए थे, सारे के सारे मेरे तो फेवरेट थे और मेरे साथ साथ आप सबके भी फेवरेट थे, क्योंकि जब वो गाने के लिए कह रहे थे बीच बीच में तो सभी उन गानों को बहुत ही अच्छी से और बहुत ही सुर में गा रहे थे, तो इससे पता चल रहा था कि वो गाने सबके फेवरेट हैं और सबको पता है और तभी तो सब अपनी फरमाइशें भी बता रहे थे। लेकिन उनका जो कलेक्शन था, चॉइस ऑफ सॉन्ग्स था, बहुत ही खूबसूरत था और बहुत मज़ा आ रहा था। बड़ी अच्छे से मज़े के साथ, यू नो, हंसके मस्ती के साथ उन्होंने पूरा प्रोग्राम दिया, मज़ा था। कहते हैं पैसा वसूल शो था। और बहुत सारे साथियों से मिलने का मौका मिला। यस, हिमांशु पटेल जी, कल मैं थी वहाँ पर लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, कभी किसी और शो में मिलेंगे। लेकिन मुझे लग रहा था मेरे वहाँ बहुत सारे लिसनर हैं, बट वही बात है, वो पहचानते नहीं हैं कि मैं हूँ, मैं वही हूँ। मतलब आप मेरी आवाज़ तो जानते हैं लेकिन बाय फेस मुझे नहीं पहचानते हैं। और मुझे ऐसे कई बार लगता है कि अगर मैं एक बार कह दूँ कि हाँ मैं ऋतु शर्मा हूँ, तो शायद बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरे हम तो आपको सुनते हैं। ऐसा होता है, लेकिन कुछ साथी मुझे पहचान गए और वो बड़े खुश थे मुझे मिलकर, और मैं उनसे ज़्यादा खुश थी उन्हें मिलकर, क्योंकि जब आप मैसेजेस भेजते हैं, अपना नाम बताते हैं और जब मुझे पता चलता है कि आप वही हैं तो मुझे भी नाम को एक चेहरा मिल जाता है तो अच्छा लगता है। संध्या भाव सर, आप कितना मैसेजेस भेजती हैं, कल आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और माशुमा जी, आपसे भी मिली मैं कल। दिनेश पोपट जी से तो मैं बहुत बार मिल चुकी हूँ, हमारे बहुत प्यारे लिसनर हैं, और बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने खूब इंजॉय किया। और मेरे को म्यूज़िक का शौक है तो उस तरह के शोज़ में मुझे जाना बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू आप सभी के अच्छे अच्छे मैसेजेस के लिए, और जिन्होंने वो फोटो मेरे साथ खींची हुई मुझे शेयर की है, थैंक यू। और मुझे जानकर अच्छा लग रहा है कि आपने भी इस शो को एंजॉय किया। तो इस तरह के शोज और उनकी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहते हैं और देते रहेंगे, इसीलिए तो है हम, बस आप हमें सुनते रहिए ताकि कोई अच्छा सा प्रोग्राम मिस ना हो जाए, है ना।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा,
0: तो याद दिला दें आपको कि लाइका एक्स्ट्रा का नया एपिसोड ड्रॉप हो गया है पॉडकास्ट का, और इस बार का टाइटल है ऑनर बेस्ड अब्यूज, जिसे होस्ट किया है दीप राजा और खुश ने। तो आप हमेशा की तरह आपको याद दिला दें कि आप हमारा पॉडकास्ट लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट सुन सकते हैं स्पॉटिफाई पर जाकर, यूट्यूब पर जाकर, अमेजन पर जाकर, एप्पल और जितने भी मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, सभी जगह लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल है।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. लाइका गोल्ड
3: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: Visit travelhubworld.com.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just 711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
5: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
7: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलीडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
8: Bhartiya Vidya Bhavan proudly presents the Summer Showcase 2026 at the iconic Harrow School on Saturday the 8th of August from 3 p.m. Experience an unforgettable celebration of Indian classical music, dance and culture. Seats are limited, so book now at ticketsource.com/Bhavan. For details, visit bhavan.net or call or WhatsApp 07421 497541. Radio partners like a radio network.
9: Attention, the ITEC Desi Independence Food Festival and Trade Week is on from the 3rd to the 9th of August at ITEC Cash & Carry Southall, with unbeatable wholesale deals on rice, dairy, frozen foods, fresh produce, catering, essentials and much more. Don't miss live tastings on the 5th and 6th of August, plus exclusive offers all week. Visit Unit 123 Southbridge Way, Southall, UB2 4AX or call 0203 393 5225. ITEC Wholesale, open 24/7, everything your business needs, all under one roof.
10: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala. Heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. UK.
11: Dad.
12: What's wrong, beta?
11: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to daddy in India.
12: I will run down to the money exchange now.
11: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
12: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
11: SBI UK, regulated by...

0: एसडी बर्मन के म्यूजिक पर चुपके चुपके फिल्म से था ये गाना, और इस गाने ने मुझे याद दिलाया है कि मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो मंडे आने वाला है उस मंडे को होगा सावन का पहला सोमवार, क्योंकि श्रावण का महीना शुरू हो गया है और ये महीना जो होता है शिव पूजा के खास दिन और रुद्राभिषेक का महीना होता है। कुछ को लोग इस पूरे महीने रुद्राभिषेक करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं और इस महीने का एक खास ही महत्व है। तो आपको बता दें कि सावन का महीना लग गया है और अगर आप भी व्रत उपवास रखती हैं सावन का, तो ये आपके लिए थी जानकारी। ब्यूटीफुल गाना जिसमें म्यूजिक था एसडी बर्मन का, और उससे पहले आज मौसम ज़रा बेईमान है और आज के मौसम के साथ ये गाना बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि आज मौसम वाकई में बड़ा अच्छा है। काफ़ी दिनों बाद ये हमें 25 टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, तो अच्छी बात है और चाहते हैं कि 2-3 डिग्री ज़रा और कम हो जाए। क्या कहते हैं आप, लग रहा है ना ऐसा? एनीवेज, दो बैक टू बैक गीतों के साथ आज के प्रोग्राम के इस लास्ट एंड फाइनल आवर की शुरुआत हो गई है, और जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको बताती चलूं कि मैं हूं ऋतु शर्मा, सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी, और 1 बजे तक यही रहने वाली हूं आपके साथ। शेखर अरन जी, आपको मैसेज मिला है, कहते हैं वाह वाह वाह धर्म भाई का गाना। धर्मेंद्र के गाने कमाल के हैं और कमाल की फिल्मों में उन्होंने काम भी किया है। लेकिन आपने ये भी लिखा है कि आपको चिंतन बहुत अच्छा लगा, आप काफ़ी इमोशनल भी हो गए, और आपने लिखा है कि जीवन लेना और देना परमात्मा के हाथ में होता है, लेकिन अब आपके लिए, आपके अंदर ऊधम सिंह जी के लिए और भी ज़्यादा रेस्पेक्ट है। सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्होंने जो अपने मन में ठाना वो कर दिखाया। आपने लिखा है कि आपने फिल्म भी देखी है, लेकिन अब आपको फिल्म और अच्छी तरह से समझ आएगी, क्योंकि कुछ बातें जो आपको नहीं पता थी वो आज के चिंतन से आपको पता चल गई। जी हाँ, सरदार ऊधम सिंह फिल्म में विकी कौशल ने काम किया है, और विकी कौशल एक बहुत ही शानदार एक्टर हैं। तो फिल्म अगर आपने नहीं देखी हो तो देख भी सकते हैं, लेकिन आज चिंतन में हमने सरदार ऊधम सिंह को याद किया था, क्योंकि आज उनकी शहादत का दिन है और आज ही के दिन उन्हें फांसी पर लटकाया गया था। ये कहते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, लेकिन यस, ऐसे ही वीरों को, और यही है देश के हीरो जिन्हें याद किया जाना चाहिए। सो थैंक यू आपके मैसेज के लिए। नैना शाह, बहुत धन्यवाद, आप साथ दे रही हैं। भारती जी, थैंक यू। मोहम्मद रफ़ी साहब के गीतों को पसंद किया है हमारे गिरीश जी ने, बहुत धन्यवाद। एंड ऑफकोर्स जासू जी, संध्या बावसा, दिनेश बोपट जी, हमारे लिसनर्स जो हमेशा साथ देते हैं, आज भी साथ दे रहे हैं। और ये बात मुझे कब पता चलती है जानते हैं? जब आप अपना मैसेज भेज कर कहते हैं ऋतु शर्मा गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, तो आपको भी मेरा गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका इस शो में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज 1 pound आपको देगा 127.8 भारतीय रुपए, लेकिन ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions भी अप्लाई रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai. Like a gold. Like a gold.
3: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
4: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
3: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.

0: और इस बार के हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक है येशुदास। लता की और येशुदास की आवाज में था ये गाना।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: तो प्रज्ञा ये गाना आपको डेडिकेट करते हैं और आपके साथ साथ अगला गीत सुनाने से पहले मैं आपको याद दिलाती चलूं कि लाइका रेडियो इज द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ लेस्टर मेला अगेन ऑन 15th एंड 16th ऑफ अगस्त एट एबी पार्क। ऑल्सो जो बेडफोर्ड मेला हो रहा है 1st एंड 2nd अगस्त को सिटी पार्क एंड सेंटेनरी स्क्वायर पर, वहां आप जा सकते हैं एंड लाइका रेडियो इस मेले के भी एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स हैं।

0: राजेश रोशन के म्यूजिक पर था ये गाना मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाजों में। खुदगर्ज फिल्म से लिया था। आपको बता दें कि वैसे तो खुदगर्ज फिल्म के जो हीरो थे वो थे जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा और भानुप्रिया, लेकिन जब भी मुझे खुदगर्ज फिल्म याद आती है तो मुझे लगता है जैसे गोविंदा और नीलम ही इस फिल्म के हीरो हीरोइन थे जबकि फिल्म के हीरो हीरोइन कोई और थे। लेकिन ये गाना इतना बड़ा हिट हुआ था कि आजकल या बहुत सारे लोगों को लगता है कि खुदगर्ज फिल्म के मेन हीरो यही दो थे मेरी तरह।
1: Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो परविंदर मथारू आप हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, स्वागत है आपका इस शो में। नैना शाह, कितनी देर से आप परेशान हो रही हैं, कोई गाने बता रही हैं आप। मैं देखती हूँ अगर मेरे सिस्टम में हुए तो ज़रूर आने वाले शोज में उन गीतों को बजाने की कोशिश करूँगी, और अगर नहीं हुए तो आपके लिए सिस्टम में हम डलवाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, आप हमारी बहुत प्यारी लिसनर हैं और अक्सर ही लिसनर्स कुछ गानों की फरमाइशें करते रहते हैं। लेकिन बताती चलूं कि ये प्रोग्राम रिक्वेस्ट शो तो नहीं होता है, हमारा ऑलरेडी सब कुछ टाइमिंग के हिसाब से सेट होता है, और एक भी गाने को इधर उधर करना मतलब सारा प्रोग्राम रीशेड्यूल करना, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम जब आप कहते हैं रिक्वेस्ट लगा दो, कई बार नहीं लगा पाते हैं, सो इसके लिए मैं आपको पहले से ये बता रही हूँ। एनीवेज, एक और बहुत खूबसूरत गीत आने वाला है और चलिए सुनवाती हूँ वो गाना।
1: ये है लाइका गोल्ड।
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.
4: Hmm?

0: आरडी बर्मन के म्यूजिक पर अरुणा ईरानी पर पिक्चराइज ये गाना लव स्टोरी फिल्म से लिया था। और प्रज्ञा कहती है कि रितु आज तो मजा आ रहा है, वीकेंड बन गया, फुल वॉल्यूम गाना। बिल्कुल, ये गाने ऐसे हैं कि जब भी सुनते हैं ना मजा ही आ जाता है। आई डोंट थिंक सो कि ये गाने कभी भी पुराने होंगे। और आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर हॉलीडे पे जाने की सोच रहे हैं तो साउथोल ट्रैवल को कॉल कीजिए। वहाँ पर बहुत अच्छी दुबई की डील्स चल रही हैं, उन्हें कॉल कीजिए 02085748410 पर। सब कुछ एट ऑल प्रोटेक्टेड भी है।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: TravelHubWorld.com Kamyabi ke shandar 22 baras celebrate kar rahe hain by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays hum se sasta kahin nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
3: TravelHub, best service with unbeatable price.
2: At all protected.
3: Visit TravelHubWorld.com. Start

0: Mamster નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Have you noticed the way fans shout at football matches?
3: Oh, wake up!
2: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
4: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना
5: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स
4: क्रंच कैन नॉट वेट सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ
6: लाइक अ रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन 7 stations, 1 podcast, 1 mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
7: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
8: Ek cheez mangte hain.
9: Kya?

0: देखो हम पर शक ना लाओ, अब जो मिलना।
1: अच्छा जी,
0: अब जो मिलना बांध के सहरा ही मिलना सरकार।
1: तो अगले इतवार
0: जी सरकार।

0: tasty track of the hour sponsored by Coca Noodles is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: Manoranjan with Ravi Sharma.
2: Like a gold.
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
4: तो आपको बता दें कि आज 1 pound के बदले में आपको मिल सकते हैं 128 भारतीय रुपए, 373 पाकिस्तानी रुपए एंड 165 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
4: So Gold Rate is 97.18 pounds per gram.
3: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
4: और लीजिए अगला गाना हमें लेकर चलेगा न्यूज तक. न्यूज के उस पार आपका साथ देंगे बाली ब्राह्म भट्ट. लेकिन कल 10 से 1 ऋतु शर्मा आपसे फिर से मिलेगी ऋतु शर्मा शो में. थैंक यू सो मच इस शो में मेरा साथ देने के लिए. अपना बहुत सा ख्याल रखिए. कल तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो.
5: हाय, मैं हूँ अश्विनी. हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइक अ गोल्ड रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी. फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग आप सभी के लिए.
6: This is Leica Gold.
7: This part of the show is brought to you by Khatron Ke Khiladi on Colors TV. Khatron Ke Khiladi every Saturday and Sunday at 8 p.m. on Colors TV.
8: Khatron Ke Khiladi.
9: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410. दैट्स 85748410.
10: साफो ट्रेवल at all protected.
11: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
12: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है. शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए. गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है. जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी. आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं.
13: Bhartiya Vidya Bhavan proudly presents the Summer Showcase 2026 at the iconic Harrow School on Saturday the 8th of August from 3 p.m. Experience an unforgettable celebration of Indian classical music, dance and culture. Seats are limited, so book now at ticketsource.com/Bhavan. For details, visit bhavan.net or call or WhatsApp 07421 497541. Radio partners like a radio network.
14: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
15: Okay. Mom, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
16: Beta, you're not alone. For 5 generations, our family trusted one thing. Pure herbal care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
15: So where do we find something like that now?
16: Right here in London. Baidyanath Sidhayu Hair Oil, Shampoo and Toothpaste. Pure Ayurvedic, premium and made it the way our eldest used it.
17: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
18: What food mein dinner plans? Thoda classy, thoda desi.
19: To aaiye Godfather & Co. Vivek House Bar & Kitchen.
18: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala se biryani tak. Fresh bread and refreshing drinks. Har bite mein lajawab flavors aur vibe bilkul premium.
19: Friends, family ya special night out. Isse yaadgar banaiye. Visit Vivek House Watford. Call 01923-227274. Book your table today.
20: Honslow, अब इंडिया का फेवरेट स्वाद बिल्कुल आपके पास.
21: बीकानेर वाला परंपरा भी
22: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ. आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हॉन्सलो, TW3 1QT. कॉल करें 07487-687-885.
23: Up next, Bally Brumbat with Gold Afternoons on Like a Gold.
24: Manoranjan.

0: Yes, we are remembering none other than Muhammad Rafi Sahab today. Rafi Sahab ki punyatithi par unhe bhavbhini shraddhanjali. Main hoon Bali Brahmbhatt on Leica Gold with Gold Afternoons. Available on 1035 medium wave DAB Alexa, Google Home and LeicaGold.com. Also available on Radio Player app. And a big hello to everyone in the Midlands. 388th day of Leica Radio Midlands. 1 se 4 baje tak main aapka saath nibhaunga. Aap mera saath nibhaiyega. Sandy Shah will come for drive time after 4 o'clock. And it's gonna be Annika in place of Raj Baddanji. मैंने बहुत सोचा रफी साहब को कैसे मैं प्रेजेंट करूं आपके सामने. Every presenter comes and says he was born on 24th of July 1924. He passed away on 31st of July 1980. He was active for 35 years from 1945 to 1980. 4,425 songs, 328 non-filmy, 310 non-Hindi. And his last song was Sham Phir Kyun Udaas Hai Dost. Abhi, obviously, kitne bacche the, bacche hain, kitni biviyan, ye sab to, you know, common statistics में आ जाता है. लेकिन मैंने सोचा जितनी बातें कम करूँगा उतने गाने ज़्यादा सुना सकूँगा मैं. तो मैंने सोचा कि नोटिस करता हूँ कि कितने हीरोज़, वैसे तो 50 हीरोज़ होंगे लेकिन जो मैंने कलेक्ट किए वो 23 हीरोज़ एंड 3 कॉमेडियंस. ऑल टुगेदर 23 हीरोज़ विद वन वॉइस, मोहम्मद रफ़ी. बिलीव यू मी, towards the end of the 3 hours, आप रो पड़ेंगे. एक आवाज इन सब हीरोज के लिए इन्होंने गाया और दिल खोल के गाया. And he manipulated his voice according to the hero he was singing for. क्या differences है, क्या changes है आप महसूस करते जाएंगे. जैसे कि मैंने A से अमिताभ बच्चन फिल्म अभिमान का गाना आपको बताया. आई गॉट अ मैसेज सेइंग ही साउंड्स अ बिट डिफरेंट हियर बिकॉज ही सिंगिंग फ्रॉम अमिताभ बच्चन. भारत भूषण जी के लिए गाया तो अगेन ही वॉज द यंग रफी सिंगिंग फॉर भारत भूषण. ऐसे तो गाने देखो तो तू गंगा की मौज में जमुना किनारा, मतलब आई कैन गो ऑन एंड ऑन विद लॉन्ग सॉन्ग्स. लेकिन मैंने छोटे छोटे गाने चूज किए हैं सबके ताकि मैं ज्यादा गाने डाल सकूं. बिस्वजीत विल बी नेक्स्ट ऑनलाइन एंड देन इट्स गोना बी दारा सिंह, दिलीप कुमार, देवानंद, धर्मेंद्र फ्रॉम डी, एफ से फिरोज खान, जी से गुरुदत्त, जे से जितेंद्रा, जे से जॉय मुखर्जी, फिर दो कॉमेडियंस जॉनी वॉकर और जगदीप अगर टाइम मिला तो, के फॉर किशोर कुमार व्हेन ही वाज एक्टिंग एंड रफी साहब वाज सिंगिंग फॉर हिम, फिर एम से होता है महमूद, अगेन अ कॉमेडियन वक्त मिला तो, आर से राजेंद्र कुमार, राज कपूर, राजेश खन्ना, राजकुमार, ऋषि कपूर, एस से तो बहुत सारे, संजीव कुमार, शम्मी कपूर, शशि कपूर, सुनील दत्त, सुदेश कुमार, संजय खान, ये सब. सो देयर आर 23 हीरोज एंड वन वॉइस ऑल द 3 hours. लेट्स गेट ऑन विद इट, शैल वी? एंड लेट मी नो ऑन 07424232323 पे आपको कैसा लगा.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to £127.85 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: जेम इन गोल्ड आफ्टरनून्स विद बाली ब्रम्बर्ट। बाली ब्रम्बर्ट जेम इन फूड्स, बिल्कुल घर जैसा स्वाद और घर जैसी ही बात। अवेलेबल एट एशियन स्टोर्स नियर यू।
1: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
1: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens, start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
7: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
6: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK mortgage smarter and walk away richer.
7: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915, or visit cashbackremortgage.co.uk.
6: Cashback Remortgages, your mortgage should work for you.
8: 0730998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग, और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 0730998823।
9: Search is changing.
10: Customers aren't just using Google anymore.
9: They're asking AI.
10: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
9: One business, one recommendation.
10: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
9: Will your business be the answer?
10: Or the one that got left behind?
9: The future of search has already started.
10: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
9: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
11: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208922334, 24 hours line.

0: रफी साहब सिंगिंग फॉर धर्मेंद्र 114 सॉन्ग्स ही सैंग फॉर धर्मजी.
1: London's biggest classics all day. This is Like a Gold.
0: फिरोज खान के लिए रफी साहब ने गाया 23 हीरोज वन वॉइस.
2: अरे अपनी चाह का मेरी निगाह का
0: ए टू जेड अभी एफ पे आ गए हम.
2: लो मैं मुसाहब सलाम सलाम मेम साहब सलाम.

रफी साहब सिंग्स फॉर गुरुदत्त। ए टू जेड, अब जी पे आए हम। 23 हीरोज, वन वॉइस। दिस इज गुरुदत्त फ्रॉम जी।

0: We are doing 23 heroes and one voice on the 46th death anniversary of Mohammad Rafi Saab, the greatest singer ever in history.
1: Across London, this is Bali Brambat on Like a Gold.
0: We have reached the letter J. J se Jitendra tha, ek banjara gaye. अभी है जॉय मुखर्जी. जॉय मुखर्जी के लिए रफ़ी साहब ने आई थिंक ही सैंग अबाउट 68 सॉन्ग्स फॉर जॉय मुखर्जी. जे से ए टू जेड ऑफ हीरोज, 23 हीरोज विद वन वॉइस एंड वी कवर्ड राइट अप टू जे. नाउ जॉय मुखर्जी.

0: वाह वाह वाह, दीज सॉन्ग्स, मैं खो जाता हूँ कोई और दुनिया में. एंड वी आर डूइंग मोहम्मद रफ़ी साहब ऑन इस 46th डेथ एनिवर्सरी. मैं बातें कम करता हूँ क्योंकि गाने इतने सारे डालने हैं. ए टू जेड मैंने सब हीरोज़ को चुना और सब ए टू जेड हीरोज़ को लेकर मैंने एक वॉइस को डाला, दैट इज़ मोहम्मद रफ़ी साहब. ए से मैंने अमिताभ बच्चन, बी से भारत भूषण, बी से विश्वजीत, डी से दारा सिंह, दिलीप कुमार, देवानंद, धर्मेंद्र, एफ से फिरोज खान, जी से गुरुदत्त. दैट वॉज द फर्स्ट आवर. सेकेंड आवर में अब तक जितेंद्र के लिए 100 गाने गाए थे रफ़ी साहब ने, फॉर जॉय मुखर्जी 68 सॉन्ग्स. एंड द नेक्स्ट कम्स किशोर कुमार. जी हाँ, किशोर कुमार जब स्क्रीन पे एक्टिंग करते थे तो कितने गाने रफ़ी साहब ने प्लेबैक में गाए थे. एक गाना मैं आपको सुनाता हूँ आज, हर हीरो के लिए एक गाना. सो ए टू जेड वी आर डूइंग 23 हीरोज एंड वन सॉन्ग पर हीरो विद वन वॉइस, रफ़ी साहब. मतलब ये 23 गानों को मैं तैयार करते करते मेरी आंखों से आंसू छलक रहे थे. How can a man manipulate his voice per hero, अलग अलग आवाज़ों में, अलग अलग स्टाइल में, giving his heart out to every hero he sang for. मैंने राजेंद्र कुमार जी को चुना है आर से, राज कपूर, राजेश खन्ना, राजकुमार, ऋषि कपूर. एस से हम ख़त्म करेंगे शो, संजीव कुमार, शम्मी कपूर, शशि कपूर, सुनील दत्त, सुदेश कुमार एंड Sanjay Khan. Let's see how it goes. I'll try my best to cover it up in 3 hours. Main hoon Bali Brahmbhatt on Gold Afternoons, remembering Rafi Sahab on Like a Gold with my show Gold Afternoons, sponsored by Jaymin.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling can get you 127.85 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI YONO mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons. Proudly sponsored by Jaymin Foods. The authentic taste of India. Dal bhat, pav bhaji, biryani. Bas pet sambhar jo, kyunki cravings badhne wali hai.
3: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
4: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
3: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410. दैट्स 0208574-8410.
6: साउथ हॉल ट्रेवल. At all protected.
7: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
8: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
7: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
8: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915 or visit cashbackremortgages.co.uk.
7: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.

0: There you go, Rajendra Kumar. Rafi Saab singing for Rajendra Kumar.
1: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
2: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Southall Travel is pleased to announce that the FCDO has lifted its advice against all but essential travel to Dubai. Call Southall Travel for the most competitive Dubai deals on 0208-574-8410. At all protected.
2: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. Leica Extra Podcast Update.
0: Episode number 27. Title is Honor-Based Abuse, hosted by Deep Raja and Khush. The intense episode uncovers the harsh reality of honor-based abuse in our Desi communities. Leica Extra Podcast, available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple and other major streaming platforms.
2: Leica Extra is here.
1: We have
3: Leica Gold.
1: You're listening to Bali Brahmat in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you.
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com
5: TravelHub बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड
5: विजिट TravelHubWorld.com
6: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
7: लंदन वालों ध्यान से सुन लो के फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है जल्दी कीजिए ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी आज ही हमारे हैरो पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर kefurniture.co.uk पर जाएं
8: You know that clean, fresh feeling after brushing? Sidayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Sidayu, Ayurved that fits your life.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
10: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 02039635757 Greens by Daniel Prime Location
9: High Appreciation
10: in Dubai
11: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर
12: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना 5-course लंच सिर्फ £35 जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड तो देर किस बात की बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 0730099823
3: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
9: બીએપીએસ મંદિરનું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
3: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ,
9: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
3: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
9: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
3: કોલ 02089002323. ધ સ્ટાર ટૂર્સ,
9: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
3: સાઉથ હોલ, દેશી સ્વાદ કા અસલી અડ્ડા આ ગયા હૈ.
13: બીકાનેર વાલા પરંપરા ભી.
14: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स. आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल, UB2 4DB. कॉल 07795181001.
15: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
2: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
6: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: Rafi Saab sings for Raj Kapoor.

0: Nobody could sing here like Rafi Sahab.
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
0: Yes, वो था रफी साहब. वो थे रफी साहब सिंगिंग फॉर मेरा नाम जोकर फॉर राज कपूर. आई एम डेडिकेटिंग ए टू जेड 23 वॉइसेस, 23 हीरोज विद वन वॉइस. रफी साहब ऑन 46th डेथ एनिवर्सरी ऑफ रफी साहब. वो हीर सुनकर आंख में आंसू आ गए क्योंकि इन्होंने वो जो हाई पिच में जब गाया दे दे दिल हमारा वापस, आई मीन ही लिटरली पुट्स हिज हार्ट आउट इन टू इट. देर आर सो मैनी सॉन्ग्स इन विच रफी साहब हिमसेल्फ हैज क्राइड वाइल सिंगिंग, दिस वॉज वन ऑफ देम. एंड में व्हेन ही सैंग मौत मांगे, उसमें इन्होंने ऐसी मुर्की ली है और मुर्की क्लासिकल ढंग में इन्होंने जो ली और साथ में इतना लंबा उन्होंने गाया, यू नीड वेरी फुल लंग्स टू सिंग लाइक दैट. यस, दैट वॉज रफी साहब सिंगिंग इन 1970. जी हाँ, ऑल आई कैन से इज दे कुड नेवर बी अ सॉन्ग, not a song but a singer like Muhammad Rafi Saab. He was sent by God and he was the voice of God. Yes, Rafi Saab. We have reached R and then the next one will be Rajesh Khanna.
2: Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Across London. This is Bali Brambat on Leica Gold.
0: Film hai Do Raaste. Rafi Saab sings for Rajesh Khanna. A to Z of singers, 23 heroes from A to Z with one voice. Muhammad Rafi Saab. Yeah.

0: मैमस्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
2: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ. आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो. डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलिडेज. कॉल करो 0203-773-6333. मंत्रा हॉलिडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा.
3: Minar Jewelers Best Independent Retailer 2026. Come and find out why. Best jewelry for the bride and groom. Phone 0208-767-7547.
4: This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk. Across London, this is Bally Brambat on Leica Gold.
5: R for Rishi Kapoor.

0: शम्मी कपूर, रफी साहब सिंगिंग फॉर शम्मी कपूर.
1: अक्रॉस लंदन, दिस इज बाली ब्रांबाट ऑन लाइक ए गोल्ड.

0: दोस्तों ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा.
1: थैंक यू फॉर योर हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस टुडे टू थैंक मी एंड टू एनकरेज मी टू डू बेटर. आपने बहुत अप्रिशिएट किया ये जो आइडिया जो मेरा था ऑफ 23 हीरोज, अब तो 24 हीरोज हो गया फॉर रफी साहब. दैट इज 23 हीरोज वन वॉइस ऑन 46th डेथ एनिवर्सरी ऑफ रफी साहब. एंड व्हाट यू हैव एक्चुअली सेड अबाउट द शो एंड इट्स कंटेंट्स एंड द प्रेज. Thank you. Thank you so much for your compliments. I really appreciate it.
2: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £96.76 per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन.
0: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
2: Visit mantraholidays.co.uk or call 02037736333 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
3: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
4: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
3: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
4: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
3: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस.
4: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
5: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com. कॉल 02087677627.
6: खाखरा क्रंच, भाखरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
7: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
6: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
8: दिस सुपरहिट ट्रैक इज ब्रॉट टू यू बाय टिल्डा बासमती राइस. टेक योर टेस्ट बड्स टू द नेक्स्ट लेवल विद टिल्डा.

0: Now I'm gonna surprise you. The 24th hero. This is the 23rd one, and that is Govinda. That's right, First Ki Jung. Kalraji Khush. Anyway, 24 heroes, one voice. 46th death anniversary of Rafi Saab. But the real man who really, really is, who idolizes Rafi Saab is here now. It's Sandy Shah. Yes, Sandy Shah. कल तक के लिए आई मीन मंडे तक इजाजत.
1: ये पर्दा हटा दो.
0: दिस इज अस संजय खान.
1: कड़ा दिखा दो.
0: होप यू एंजॉयड द ट्रिब्यूट एंड एनिका ऑन लाइका रेडियो मिडलैंड्स.

0: ਅਤੇ ਗੋਲਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ
1: All Mamster products are nut free and made in Canada now available at quality food branches
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com टीज एंड सीज अप्लाई
3: ब्रांड्स दैट यूज रेडियो आर 49% मोर लाइकली टू गेट नोटिस्ड Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
4: Like a Goon. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagoon.com. Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
5: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Gold Drive with Sandy Shah. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
1: They are indeed, and their Southall Travel are very pleased to announce that the SCDO has lifted its advice against all but essential travel to Dubai. Call Southall Travel for the most competitive Dubai deals on 0208 574 8410. And don't forget, they are atoll protected.
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. This is Like a Gold.
2: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
3: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड
3: विजिट travelhubworld.com
4: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है जल्दी कीजिए ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी आज ही हमारे हैरो पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
5: Celebrate Krishna Janamashtami in a truly vibrant way. Join us on Sunday the 30th of August from 2 p.m. to 8 p.m. at Navnath Centre, Printing House Lane, Hayes, UB3 1AR. Live music, Ramayan play, Ras Leela, delicious food, fun fair, shopping and free entry with free parking. Book a stall for your business before the 15th of August by calling Ramesh Shah on 07742045154. Exclusive radio partner, Leica Radio Network. This ad is sponsored by Jamin Foods.
6: 07300998823 नोट किया किटी पार्टी बिजनेस मीटिंग कॉर्पोरेट इवेंट फैमिली ओकेजन बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को सर्विस एक्सेलेंट फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे विवेक हाउस वॉटफर्ड बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823
7: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
8: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019 238 83100 Atoll Protected.
9: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
10: Okay, Laura, from the top.
11: When your 9-year-old is an unexpected tuba prodigy, and now you want to support her cheek-puffing talent, be a step ahead with Barclays Premier. With personalised financial planning and a dedicated advisor. Barclays, backing your future. Eligibility criteria apply. Investment products and services are provided by Barclays Bank PLC and its subsidiaries. Capital at risk.
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. This is Sandy Shah on Gold Drive.
12: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज रेडियो डिजिटल या इवेंट सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड जल्दी करिए कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com
13: Hey, this is Sandy Shah, and if you love your 40s and 50s music, then join me on Vintage Gold every weekend between 7 and 10 p.m. on Leica Gold. Make it a date.

0: मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया।
1: It's summer on the Leica Radio Network.
2: बड़ी दूर से

0: मोहम्मद रफी साहब की आवाज, उनका नाम था राख और चिंगारी. वंस अगेन थैंक यू फॉर योर लवली मैसेजेस एंड जस्ट कैरिंग ऑन वे वी वेयर आई हैव जस्ट फिनिश्ड दैट ऑफ. अगेन अनदर फिल्म. Nobody, a lot of people I knew never even knew the film existed. Title was Cha Cha Cha. And if you listen to this song, I think koi aur gata, you would think, okay, it's not bad. This one man makes this song on a level you just can't. You think, how does such a song be elevated to such a level? Enjoy.
1: Gold Drive with Sandy Shah. Oh, yeah.

0: Mica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
1: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
2: TravelHub, best service with unbeatable price.
1: At all protected.
2: Visit TravelHubWorld.com.
3: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
4: यार कभी कभी अपने देश के छोले भटूरे, राज कचोरी और मिठाइयों की बहुत याद आती है,
5: तो फिर इंतजार क्यों? हॉन्स्लो एंड साउथ हॉल के बाद अब बीकानेर वाला आ गया है गैंसिल इलफोर्ड में.
4: सच?
5: बिल्कुल, देश का असली स्वाद, लाजवाब मिठाइयाँ और अपनेपन की खुशबू सब एक ही जगह.
6: आज ही विजिट करें बीकानेर वाला 513-519 क्रैनबुक रोड, गैंसिल इलफोर्ड, IG2 6HA. कॉल करें 07555-506-015. बीकानेर वाला, टेस्ट ऑफ इंडिया नाउ इन इल्फोर्ड.
7: Anuj Chopra Foundation proudly presents An Evening of Elegance, hosted by Anisa Nasir. तैयार हो जाइए एक यादगार शाम के लिए जहां गजल्स मिलती है बॉलीवुड से.
8: शाम चलने लगे, दिल मच.
7: With the legendary Anup Chalota on Sunday, 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 PM. Show starts 6 PM. Ticket starts from £40. Book now at queens-theatre.co.uk. Radio partners like our radio network.
9: Bhartiya Vidya Bhavan proudly presents the Summer Showcase 2026 at the iconic Harrow School on Saturday, the 8th of August from 3 PM. Experience an unforgettable celebration of Indian classical music, dance and culture. Seats are limited, so book now at ticketsource.com/Bhavan. For details, visit bhavan.net or call or WhatsApp 07421-497-541. Radio partners like a radio network.
10: Looking for great value on quality flour? Head to your nearest quality food store today. Falcon Chakki Atta 10 kg is now available for an amazing price of just £7.99. Perfect for soft rotis, chapatis and everyday cooking. Don't miss this fantastic offer. Falcon Chakki Atta 10 kg, only £7.99, exclusively at quality food stores.
11: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
12: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
11: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
12: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
11: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
12: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई.
13: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
14: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
13: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
0: लाइक अ रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन.
15: Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics.
0: On this week's Leica Extra podcast, Kush and Deep Raja discuss honour-based abuse.
16: When people are going to get help, those additional perpetrators aren't necessarily being recognised. The primary perpetrator, the husband, was captured, but, you know, the rest of the key players behind the scenes weren't recognised. And we need to kind of be talking about this more so that professionals can catch, you know, all of the perpetrators of this abuse that carry it out.
0: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Making summer feel better. This is Leica Gold.

0: This is Sandy Shah on Gold Drive. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
1: They are indeed, and they're very pleased to announce that the FCDO has lifted its advice against all but essential travel to the bee. Call Southall Travel for the most best deals you can get on 0208 574 8410, and don't forget they are at all protected.
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. This is Like a Gold.
2: Travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on travelhubworld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call Travelhub 24/7 on 0208 782 8833 or visit travelhubworld.com.
3: Travelhub, best service with unbeatable price.
2: At all protected.
3: Visit travelhubworld.com.
4: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना. परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापूजी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा. 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में. समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक. नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें. शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 0793027
5: के घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है. इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे. कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस. कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208 922 3344 24 लाइन.
6: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी.
7: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
6: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स. हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
7: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वॉटफुट. कॉल 0192322 7274. बुक योर टेबल टुडे.
8: हॉन्स्लो, अब इंडिया का फेवरेट स्वाद बिल्कुल आपके पास.
9: बीकानेर वाला परंपरा भी, स्वाद भी.
10: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ. आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हॉन्स्लो, TW3 1QT. कॉल करे 07487-687-885.
11: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
12: Minar Jewelers, Wandsworth's Business Award winners. Best Customer Service 2026. Come and find out why. Beautiful diamond engagement rings starting from £500. Phone 0208 767 7547.
13: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
14: Mango season has arrived. Here also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
13: Jaimin Foods Mango Pulp, available now.
0: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics. Download the Like a Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
15: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.
16: Ayaya, suku, suku! Ayaya!

0: अते गोलगप्पियां दा पानी।
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Hi, मैं हूँ अश्विनी। हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइक अ गोल्ड रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी। फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग आप सभी के लिए।
3: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: officially London's number one Asian commercial radio group. Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
1: आज लंदन में हल्के फुल्के बादल, हल्के फुल्के हवा, 15 डिग्री टेम्परेचर, कल मैक्सिमम 26, मिनिमम 15, सूर्य देवता होंगे हम पे मेहरबान. मैनचेस्टर में आज रात हल्के फुल्के बादल, हल्की फुल्की हवा, 11 डिग्री टेम्परेचर, कल मैक्सिमम 20, मिनिमम 10, सनी इंटरवल्स.
0: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
1: जल्दी शाम ले चलिए हमें सुहाने रात की ओर. द इवनिंग शो विद अश्विनी में तैयार हो जाइए फॉर फैंटास्टिक मेलोडियस जर्नी, यादों की बारात, इमोशन ऑफ द डे. एंड आज सारे के सारे 3 घंटे, पूरा का पूरा 3 घंटा, सारे गीत मोहम्मद रफी की आवाज में. दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी.
0: लाइक अ गोल्ड, लेट्स रिटर्न टू द बिगेस्ट हिट्स बैक टू बैक. स्पॉन्सर्ड बाय travelhubworld.com. फॉर द बेस्ट सर्विस एंड अनबीटेबल प्राइसेस विजिट travelhubworld.com. travelhubworld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: ट्रेवल हब
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
0: लाइक अ साउंडिंग बेटर देन एवर इन द सनशाइन. दिस is like a gold.

0: भी जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइक अ गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। जैसे ही हमने अनाउंस किया कि अब ये पूरा ट्रिब्यूट होने वाला है 3 आवर्स का मोहम्मद रफी जी के लिए, तो कितने खुश हुए आप और मेरे साइलेंट लिसनर्स, हाँ मुस्कुरा रहे हो, बिल्कुल हाई हेलो कर दो। सो आप सब सुन रहे हैं द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। फैंटास्टिक फ्राइडे मनाएंगे आप और हम आज पूरे 3 घंटे। ट्रीट है भाई, ट्रीट है, जैसे कि आपको सैंडी ने कहा कि मज़ा आने वाला है शो में, है ना, क्योंकि एवरी फैंटास्टिक फ्राइडे हम मनाते हैं मस्ती भरे गीतों के साथ में, वो आज होने वाला है। लेकिन सिर्फ चेंज इतना है कि ओए होए होए होए होए आवाज़ की दुनिया के बेताज बादशाह जो हैं मोहम्मद रफ़ी जी, उनकी आवाज़ में आज मोस्ट ऑफ द गीत होंगे। भाई पूछें आप सबसे कैसे हैं आप सब, फ्राइडे तक आ गए, कंग्रेचुलेशंस, पूरा सप्ताह निकल गया, बस अब कल और परसों जिंदगी जिएंगे, 5 हफ्ते जिंदगी बिल्डअप की। इफ़ यू रिमेम्बर मैंने आपसे मंडे ये सवाल पूछा था कि आप जिंदगी सही मायने में कब जीते हैं, वीकडेज में या वीकेंड्स, तो वीकडेज में बिल्डअप कर ली लाइफ, वीकेंड रिलैक्स और उसे एंजॉय करने के लिए हो जाइए तैयार। हमेशा की तरह एक लाइफ थियरी लेके आई हूँ और सवाल कुछ होगा मेरे पास में आज, हाँ बस ये बता दीजिए जब आपने ये सुना कि आज ये पूरा ट्रिब्यूट होगा, कैसा लगा भाई आपको?
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 127 इंडियन रुपी एंड 65 पैसे। डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच, ऑनलाइन और SBI यूनो मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.

में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमान मुद्दत से दिल उदार दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा, जा।

0: क्या बात है, बड़े बड़े फैंटास्टिक ट्रैक्स आप सभी को सुनाए। पहला था दर्द दिल फ्रॉम कर्ज, दूसरा जमाने को दिखाना है, अभी शागिर्द से सुनाया आपको मोहम्मद रफ़ी NIS जौहर की आवाज़ में। इसमें जब वो ना जब वो ऐसे हकलाते आई जस्ट एंजॉय दैट स्टफ। यहाँ पे और वॉल्यूम मैंने बढ़ा लिया। आई जस्ट लव दिस ट्रैक, शागिर्द का ये जो गाना है ना, इसमें बड़ा मज़ा आता है। और जिन्होंने ये गीत देखा हुआ है उनकी आंखों के सामने तो पूरा वो एक ना ऐसे इट जस्ट फ्लैशेस इन फ्रंट ऑफ योर आईज। फैंटास्टिक ट्रैक्स लाइंड अप हैं आज आप सभी के लिए। बस कुछ ही देर में आप सबको मैं सुनाने वाली हूँ हमारी आज की लाइफ थियरी। आप अपना साथ देते रहिए और आप सभी जो हैं इतने मुस्कुराते हुए जो सारे के सारे इमोजीज मुझे भेज रहे हैं, क्योंकि मैंने सवाल आज ये पूछा है कि आज कैसा लग रहा है। पूरा 3 आवर्स का मोहम्मद रफी जी को ट्रिब्यूट देंगे।
1: This is Ash Winnie on Like a Gold. This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
2: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
1: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.
3: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
4: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
3: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
4: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgages.co.uk.
3: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
5: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
6: Bhartiya Vidya Bhavan proudly presents the Summer Showcase 2026 at the iconic Harrow School on Saturday the 8th of August from 3 p.m. Experience an unforgettable celebration of Indian classical music, dance and culture. Seats are limited, so book now at ticketsource.com/Bhavan. For details, visit bhavan.net or call or WhatsApp 07421 497541. Radio partners, Leica Radio Network.
7: 07300998823 नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
8: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
9: Relax, I've booked the Uber already.
8: But how? My roaming isn't even working yet.
9: I switched to Simzy before we left London.
8: Simzy? Since when are you the tech expert?
9: Since I decided I want a stress-free holiday.
10: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
11: T's and C's apply.
12: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019 238 83100. Atoll protected.
13: Attention, the ITEC Desi Independence Food Festival and Trade Week is on from the 3rd to the 9th of August at ITEC Cash & Carry Southall with unbeatable wholesale deals on rice, dairy, frozen foods, fresh produce, catering, essentials and much more. Don't miss live tastings on the 5th and 6th of August plus exclusive offers all week. Visit Unit 123 South Bridge Way, Southall, UB2 4AX or call 0203 393 5225. ITEC Wholesale, open 24/7, everything your business needs, all under one roof.
14: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
15: Like a cool, London का number one Asian retro music station अब available है Greater London में 10:35 AM पर DAB Digital Radio पर। Alexa पे बोलो play Like a Gold और online सुनो likeagold.com पे। Feel good track brought to you by Dairy Valley.
16: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com. Ye hai Laika Gold, 10:35 AM.
2: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ में लैला मजनू फिल्म से सुनाया आप सभी को ये गीत। चलिए लाइफ थ्योरी के बारे में ज़रा बात हो जाए। तो रोज़ इस समय आप सभी को मैं कोई ना कोई लाइफ थ्योरी ज़रूर सुनाती हूँ। आज की लाइफ थ्योरी का नाम है द डायरेक्शन थ्योरी। तो केनिया के जो एथलीट्स हैं मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम विलेजेस, और जब भी वो कोई भी रनिंग रेस जीतते हैं उसके बाद जब अपने गांव पहुंचते हैं, अपने विलेज पहुंचते हैं, तो जो भी मेडल उनको मिलता है वो अपने गले में लटका कर और जो उस विलेज की गलियां हैं, स्ट्रीट्स है, वहां से अपनी दौड़ लगाना शुरू करते हैं, अपनी प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। अब उन्हें देखकर उस गांव के जो छोटे बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, जो जवान बच्चे हैं, वो उनके साथ में दौड़ना शुरू करते हैं। सोचिए उस एथलीट को जिसको आपने टेलीविज़न पे देखा, और वही एथलीट आपके अपने गांव शहर से, आपके अपनी गलियों से अगर दौड़ने लगे तो बच्चों के लिए कितनी खुशी का ये एहसास होगा। बच्चे उनके साथ दौड़ते हैं और बच्चों को देख के वो भी उत्साह में आते हैं और वो भी दौड़ते हैं। उन्हें देख के बच्चे बड़ी ही स्पीड में बहुत फास्ट दौड़ने लगते हैं, अब बच्चों को देख के वो भी स्पीड में दौड़ने लगते हैं। अब कुल मिला के ये फास्ट दौड़ने वाली ये जो रेस होती है ये शुरू हो जाती है। दोनों ही वो एथलीट साथ में वो जो बच्चे हैं वो एक दूसरे की तरफ मुस्कुराकर देखते रहते हैं और एक दूसरे को बूस्टअप करते हुए अपनी जो प्रैक्टिस है वो करते रहते हैं। अब इसका हमारी लाइफ थ्योरी से क्या लेना देना? हम जहाँ जिस सोसाइटी में, कम्युनिटी में रहते हैं, जिस जहाँ में रहते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा एक इंसान होता है जो अचीवमेंट करता है और जो सोसाइटी में कोई ना कोई चेंज लाना चाहता है। तो जब हम उसे कोई ना कोई डायरेक्शन में जाते हुए देखते हैं जो शायद हमें भी कभी करना था, तो हम भी उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और साथ में जब ये पूरा का पूरा झुंड आ जाता है साथ में, वो सारे लाइक माइंडेड लोग जो सोसाइटी के लिए, जो दुनिया के लिए, जो लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो जब ये पूरा जत्था साथ में आ जाता है तो जिस डायरेक्शन में, जिस चीज़ के लिए वो काम शुरू किया था उस मुकाम तक वो पहुंचते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि आपके अपने परिवार, सोसाइटी में ऐसे कुछ लोग होंगे जो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। उन्हें देख के इंस्पायर होइए, मोटिवेट होइए। शायद आप वो हो कि जिसे देख के लोग मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं। तो ज़रूर अपने आसपास के लोगों को, सोसाइटी को, अपने गांव, शहर, देश को मोटिवेट करते चले, अपने आसपास के लोगों को प्राउड फील कराते चले एंड सबको डायरेक्शन देते चले, क्योंकि ऐसे लोगों की हमारी दुनिया में बहुत ज़रूरत है। आपकी लाइफ में कोई डायरेक्शन देने वाला है या नहीं, सोचिए, याद कीजिए, हाँ मुझे मत बताइए। उन्हें फॉलो करना है या नहीं, डिसीजन है आपका, क्योंकि लाइफ है आपकी। कैसे लगी है थ्योरी जरूर बताइएगा।
0: द इवनिंग शो विद अश्विनी। नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ। मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच, मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा।

देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। देखो कसम से, कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।

0: Updates for London at Breakfast and Drive.
1: It's official. Tesco Pet Insurance is the dogs, biscuits. At Tesco, we love pets, and we've been awarded a Which Best Buy for all our lifetime dog and cat policies with over £5,000 cover. We offer a range of different policies and cover levels, so your cat gets the cream of pet insurance. To get a quote, search Tesco Pet Insurance. Cats and dogs aged 8 weeks or over. Monetary limits, excesses and exclusions apply. Provided by Pinnacle Insurance Limited.
0: This is Ash Winnie on Like a Gold.
2: Hubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 और 02087828833 और विजिट travelhubworld.com
3: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड
3: विजिट travelhubworld.com
4: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर
5: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना 5-course lunch सिर्फ £35 जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड तो देर किस बात की बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823
6: यार कभी कभी अपने देश के छोले भटूरे राज कचोरी और मिठाइयों की बहुत याद आती है
7: तो फिर इंतजार क्यों हॉन्सलो एंड साउथ हॉल के बाद अब बीकानेर वाला आ गया है गैंसिल इलफोर्ड में
6: सच
7: बिल्कुल देश का असली स्वाद लाजवाब मिठाइयाँ और अपनेपन की खुशबू सब एक ही जगह
8: आज ही विजिट करें बीकानेर वाला 513-519 क्रैनबुक रोड गैंसिल इलफोर्ड IG2 6HA कॉल करें 07555-506-015 बीकानेर वाला टेस्ट ऑफ इंडिया नाउ इन Ilford.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
10: Located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 02039635757 Greens by Danube Prime Location
9: High Appreciation
10: in Dubai
11: Start

0: क्या बात है जी, सेकेंड आवर में आप और हम बढ़ रहे हैं आगे इस म्यूजिकल जर्नी में। बिल्कुल एंजॉय करते चलिए, वॉल्यूम अप रखिए, क्योंकि आज हम पूरे 3 घंटे का ट्रिब्यूट कर रहे हैं मोहम्मद रफी जी के लिए। इमोशन ऑफ द डे का डे होगा इसी आवर में।
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: Travel Hub.
2: At all protected.
1: Leica.
4: The evening show with Ashwini.

0: Feel good classics all day. This is Like a Gold.
1: Competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
2: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 127 इंडियन रुपी एंड 65 पैसे. एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और एसबीआई योनो मोबाइल ऐप. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. 8:15. इस आवर का आगाज किया था हमने वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स तू इस तरह, दैट वाज फ्रॉम आप तो ऐसे ना थे. एंड सेकंड हमने लिया था शान फिल्म से, बड़ा मस्ती भरा गाना था ये भी. नेक्स्ट ट्रैक जो आपको सुना रहे हैं द ट्रेन से सुनाएंगे. आज आप लोग, कई लोग अपनी अपनी फरमाइश वाली लिस्ट भी भेज रहे हैं, लेकिन एज़ यू ऑल नो दिस इज़ नॉट अ रिक्वेस्ट शो और यहाँ पे जो है प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोड हो जाती है. तो आई हैव टू अपोलोजाइज कि मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट तो नहीं ले पाऊँगी, लेकिन पूरी कोशिश होती है कि काफ़ी वेराइटी और वेरिएशन आपके लिए यहाँ पे हम प्रेजेंट कर सकते हैं. कुछ ही देर में बात करते हैं कुछ ऐसे गीतों के बारे में जो हमारे मन को बड़े लुभाते हैं. आप लोगों से इंटरेक्शन बैक टू बैक शुरू है और आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, कितना आप लोग इन्जॉय कर रहे हैं ये आपसे बता रहे हैं. अच्छा, होता यह है कि आप लोगों से इंटरेक्शन जब होती है कई बार थोड़ी ना एक रिस्पेक्ट का दायरा कई लोगों से छूट जाता है. एंड हमें ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि द रिस्पेक्ट, यू नो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि वो दायरा कभी छूटे ना जब हम किसी से बात कर रहे हैं. मस्ती मजाक अपनी तरफ, रिस्पेक्ट अपनी तरफ होता है. सो आई एम श्योर कि आप सभी लिसनर्स जो हैं आप इतने अच्छी तरह से इतने रिस्पेक्टफुली मैसेज भेजते हैं. कभी कुछ हो जाता है कि सर्टन पीपल मस्ती मजाक में थोड़ा एक्स्ट्रा लाइन क्रॉस कर जाते हैं. एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि यू नो एक अच्छी इंटरेक्शन हो, एक फ्रूटफुल इंटरेक्शन हो और कहीं हम लाइन क्रॉस ना करें. दैट इज़ सो सो क्रूशल. नेक्स्ट ट्रैक मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सभी के लिए द ट्रेन से.

0: इमोशन ऑफ द डे, फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: चलिए मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है, 8:29. इट्स 8:29. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. 31st of July फ्राइडे, तो कल वीकेंड भी है, नया महीना भी है, अगस्त भी शुरू हो रहा है. तो जब भी कोई न्यू मंथ आता है तो फॉर मी आई डोंट नो, आई फील वेरी हैप्पी. यू नो, जब भी किसी भी चीज़ की नई शुरुआत होती, नया सप्ताह भी होता है. आई नो लोग बोलेंगे मंडे पे तुम कैसी खुश हो सकती हो, क्योंकि नया दिन एक तो होता है, नया वीक होता है, वो कितनी सारी चीज़ें हमारे लिए लेके आता है. एंड स्पेशली फॉर मी, बिकॉज आई एम पैशनेटली यू नो लविंग माई जॉब, आई एम पैशनेट अबाउट माई जॉब एंड आई एम लविंग माई जॉब. तो दो शब्द मिला के मैंने अभी पैशनेटली लविंग माई जॉब बोल दिया. इट्स ओके, डोंट गो इन टू द ग्रामर, एट टाइम्स इट्स ओके. सो वैन यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, तो उसे आप तहे दिल से इंजॉय करते हैं. एक तो ना, दुनिया में बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि उनका पैशन क्या है. प्लीज़ ढूंढना शुरू कीजिए. हमारा जो इंटरैक्टिव सेशन होता है ना एट द बिगिनिंग ऑफ द शो, और मैं आपको रोज़ एक सवाल पूछती हूँ कि आपके हिसाब से पैशन क्या होता है. आज मैंने आपको सवाल नहीं पूछा था, चलो अब पूछती हूँ, आपके हिसाब से पैशन क्या है? मेरे हिसाब से पैशन वो चीज़ है जब उस चीज़ को करते हुए मैं घड़ी की तरफ नहीं देखती. आप कहो कि अश्विनी तुम तो बार बार हमको यहाँ पे टाइम याद दिलाती हो. अरे बाबा, शो चल रहा है ना, इसलिए टाइम याद दिलाना पड़ता है. बट देर आर सो मैनी थिंग्स, लाइक ड्राइविंग फॉर मी इज़ अनदर पैशन. आई लव टू ड्राइव, है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है ड्राइविंग करना. तो ऐसे जो पैशन होता है ना, बहुत सारे लोगों को अपना पैशन पता नहीं, ढूंढना शुरू कीजिए. उसमें से बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपना पैशन फॉलो करने मिलता है. तीसरा, बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जिनको अपने पैशन पता है, वो फॉलो करने मिलता है एंड उसमें से वो कमाते भी हैं. तो इसे कहा जाता है इकीगाई, जापानीज टर्म है, ज़रूर चेक करिएगा इकीगाई. क्या आपको अपना इकीगाई मिल गया? मुझे ज़रूर बताइएगा. अच्छा, बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो अगर चेंजेस आ जाए तो हमारे लिए कितने हेल्पफुल होंगे. ये कौन सी चेंजेस के बारे में मैं बात कर रही हूँ बताऊंगी कुछ ही देर में. लेकिन उसके पहले बैराग फिल्म से वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स अगेन, मोहम्मद रफी एंड लता मंगेशकर की आवाज में सारे शहर में.
0: दिस इज लाइक अ गोल्ड, द परफेक्ट साउंडट्रैक फॉर अ ब्रिटिश समर हीट वेव.

0: ये है लाइका गोल्ड। Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट। Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Like a Gold and Like a Radio Midlands from 1 PM to 4 PM।
1: भाई एपिसोड नंबर 27 आ चुका है तो जरूर इसे देखिए सुनिए। दीप राजा एंड कुश ने इसे होस्ट किया है। द इंटेंस एपिसोड अनकवर्स द हार्श रियलिटी ऑफ ऑनर बेस्ड अब्यूज इन आर देसी कम्युनिटीज। ऑनर बेस्ड अब्यूज, वेल दिस इज क्वाइट एन इंटेंस टॉपिक और जरूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बात हुई है, काफ़ी मुद्दों पर बात हुई है। व्हेन लोग क्या सोचेंगे बिकम्स लाउडर देन सेफ्टी एंड इट्स नॉट जस्ट वुमेन, दिस ऑल्सो अफेक्ट्स मैन हु सफर इन silence and are often overlooked in the conversations. So Laika Extra Podcast available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple and other major streaming platforms. Laika Extra.

0: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम क्या हुआ है। इट्स नियरली 38 मिनट्स पास्ट 8। तो वीकेंड है, वीकेंड के प्लान बन चुके हैं आप सबके, कहाँ जहाँ जाना है, क्या शॉपिंग करना है, क्या खाना बनाना है। भाई आप लोग कितनी वैरायटी ऑफ डिशेस बना रहे हो और वो सब के सब आप मुझे भेजे जा रहे हो पिक्चर्स, क्या सोचे थे? अश्विनी खुश हो जाएगी, हाँ शाबाशी देगी। अरे यार यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं, कोई भिंडी की सब्जी भेज रहा है, कोई वड़ा पाव भेज रहा है, कोई पता नहीं नेपाली थाली भेज रहे हैं, क्या मतलब काहे ऐसा कर रहे हैं आप लोग, क्या मजा आ रहा है आपको ऐसे करने में? थैंक यू सो मच, मस्ती मजाक एक तरफ, थैंक यू सो मच, आप लोग आपकी ज़िंदगी का इतना अहम हिस्सा हम सबको बनाते हैं। देखो ना, हम लोग आपके घर के मेंबर तो बन ही चुके हैं ना, रेडियो द्वारा आपके घर में आते हैं, आप लोग भी आपने अपने पैशन के बारे में बताते हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है उसके बारे में बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये इंटरेक्शन आप लोगों के साथ में। एंड म्यूज़िक एक ऐसा माध्यम है जिससे आप और हम साथ में जुड़े हैं। तो भाई मैं कल से कह रही हूँ कि ऐसी कुछ बातें हैं, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो अगर उस पर थोड़ा सा काम किया जाए ना तो हमारी ज़िंदगी और भी आसान हो जाएगी। अब ट्रैफिक लाइट्स पे जब हम शुरू होते हैं, मतलब रुक जाते हैं, तो वहाँ पे अब लोगों की गाड़ियों के स्पीड बढ़ने लगते हैं, हॉकिंग कभी कभी शुरू हो जाती है क्योंकि लोग मूव नहीं हो रहे हैं। सो इन अ वे अगर ट्रैफिक लाइट पे ये दिखा दिया जाए कि कितने सेकेंड में बस ग्रीन लाइट होने वाला है, तो शायद वो जो एक हॉकिंग और वो जो इम्पेशेंट होने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए शायद अच्छा हो जाए। पब्लिक बेंचेस पे देयर शुड बी बैग हुक्स ताकि लोग बैग्स साइड में हैंग करके दे कैन गिव प्लेस टू सिट अदर पीपल एज वेल, है ना। हॉस्पिटल्स शुड डिस्प्ले वेट टाइम्स सो पेशेंट्स फील लेस एंक्शियस कि भाई ना अपना ए पर्सन को अभी 20 मिनट्स, बी पर्सन को 30 मिनट्स ऐसे आ जाए ना, तो इंसान थोड़ा वहीं पे आराम से बैठता है, अपना ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाता। ट्रेन स्टेशंस शुड हेल्प पैसेंजर्स बोर्ड द लीस्ट क्राउडेड कैरेजेस, तो कैरेजेस में पिक्चर्स जो चलती रहती हैं स्क्रीन पे उस पे अगर आ जाए कि ये अला फला कैरेज जो हैं इसमें लोग कम हैं, तो मे बी बाकी जो पैसेंजर्स खड़े हैं प्लेटफॉर्म पे दे कैन एक्चुअली यू नो दे कैन समझो फाए कि हम कौन से कैरेज में जा सकते हैं। एवरी डिश शुड डिस्प्ले इट्स स्पाइस लेवल ऑन द मेन्यू, आई थिंक विद पिज्ज़ा से हो जाता है ना, बट हमारे जो देसी डिशेज होती हैं करीज, वहाँ पे भी शायद कितना मतलब माइल्ड है या फिर स्पाइसी डिश है बताना चाहिए। नेक्स्ट ट्रैक आप सभी के लिए सुहाग फिल्म से।
1: दिस इज अश्विनी ऑन लाइक अ गोल्ड, travelhubworld.com। कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
2: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: विजिट travelhubworld.com।
3: Dad,
4: what's wrong, beta?
3: The Indian rupee has skyrocketed, and it's the best time to send money to daddy in India.
4: I will run down to the money exchange now.
3: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app, and you'll get a fast service right from your phone.
4: Oi, bale bale! I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
3: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
5: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
1: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
6: भजन फिनोमिनन अब लंदन में धमाके करने आ रहा है। बैकस्टेज सिबलिंग्स परफॉर्म लाइव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द यूके। जॉइन द पायनियर्स ऑफ भजन जैमिंग ऑन फ्राइडे द 9th एंड सैटरडे द 10th ऑफ अक्टूबर एट SKLPC नॉर्थोल्ट। एक शाम सोलफुल म्यूजिक, डिवोशन और एनर्जी के नाम। टिकट्स बुक कीजिए ऑन SKLPC.com/BSS। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क।
7: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T&Cs अप्लाई। Mina Jewelers, best overall business of Wandsworth 2026. Come and find out why. 24 karat gold bars and coins without VAT at the lowest prices. Phone 0208-767-7547.
8: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Ashwini, brightening up your weeknights.

0: like our gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिल सकते हैं, कभी कभी हमारे एक कंप्यूटर साहब भी जो है, एक पाउंड के बदले आपको मिल सकते हैं 128 इंडियन रुपीज एंड 66 पैसे, 374.65 पाकिस्तानी रुपी, 452.85 श्रीलंकन रुपी, 166.6 बांग्लादेशी टाका, 88.35 अफगानी, 174.39 केनियन शिलिंग, 1.34 यूएस डॉलर्स, 63.36 मॉरिशियन रुपी.
2: Laika Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Laika. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Laika Gold.
0: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £96.75 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com. Or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
1: सुहाग फिल्म से सुनाया था, मोहम्मद रफ़ी, शैलेंद्र सिंह, आशा भोसले की आवाज़ में, तेरे रब ने बना दी जोड़ी. एंड आज मैं तो खुश हुई, लेकिन आप सब भी कितने खुश हैं. एवरीबॉडी इज़ लाइक, कोई बता रहा है कि कैसे वो शॉपिंग के लिए निकले थे एंड वो हमें सुन रहे हैं, कोई कह रहा है कि हम पार्क में टहल रहे हैं, किसी ने कहा मैं अपने पेट डॉग के साथ में घूम रहा हूँ और उसके साथ में ये गीत सुन रहा हूँ, किसी ने कहा कि भाई मैंने वॉल्यूम इतना बड़ा रखा है रेडियो का कि मेरे प्लांट्स जो हैं गार्डन में वो भी आपका गीत संगीत सुनते हैं. हेलो प्लांट्स, कैसे हैं आप सब? ओके, अच्छा ये सच में बताना, डू यू टॉक टू द नॉन लिविंग थिंग्स इन द हाउस? बिकॉज आई डू दिस रेगुलरली. मतलब व्हेन आई सिट इन माय कार यहाँ पे आने के लिए, सो आई से हेलो एंड आई से थैंक यू टू माय कार जब मैं पहुँच जाती हूँ यहाँ से. एंड आई स्टार्ट माय कार आई विल ऑलवेज से गणपति बप्पा मोरिया. सो माय फ्रेंड इज़ लाइक कि तू सारा बोझ भगवान पे डाल देती. मैंने कहा हाँ हाँ, उनकी जिम्मेदारी है भाई. When I leave my workplace, I say thank you. जो भी non-living things है ना, देखिए आपकी ना एक बहुत अच्छी एनर्जी होती है आपके पास में, तो उस अच्छी एनर्जी को अच्छी जगह यूज़ करिए. बी ग्रेटफुल, बी इन ग्रैटिट्यूड. आप सभी एक्सपीरियंस लोग हैं, मैं आपको और क्या ही ज़्यादा सिखा तो नहीं रही हूँ, बस याद दिला रही हूँ. चलते हैं लास्ट ट्रैक की तरफ.
0: Laika Radio Network. This is Ashwini on Laika Gold.
3: This part of the show is brought to you by Khatron Ke Khiladi on Colors TV. Khatron Ke Khiladi, every Saturday and Sunday at 8 PM on Colors TV.
4: Khatron Ke Khiladi.
5: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
6: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
5: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
6: गारंटेड.
5: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल,
6: फोन 02085748410.
5: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
8: अनुज चोपड़ा फाउंडेशन प्राउडली presents an evening of elegance hosted by Anisa Nasir. तैयार हो जाइए एक यादगार शाम के लिए जहां गजल्स मिलती है बॉलीवुड से.
9: शाम चलने लगे दिल मच.
8: With the legendary Anoop Chalota on Sunday 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 PM. Show starts 6 PM. Ticket starts from £40. Book now at queens-theatre.co.uk. Radio partners Laika Radio Network.
10: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
11: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
12: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
11: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
13: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
14: द इवनिंग शो विद अश्विनी।
15: Forgotten memories refreshed. Laika Gold.

0: वेलकम, दिस इज द थर्ड आवर एंड द आखिरी आवर ऑफ द इवनिंग शो विद अश्विनी. इस आवर का आगाज हमने किया था नसीब फिल्म से, जॉन जॉनी जनार्दन, एंड नेक्स्ट वॉज पसंद आ गई है वो काफिर हसीना. सो ऑल हसीनाओं, आप लोगों के लिए डेडिकेटेड ये गीत आप सबके लिए है ना. देखो जब भी कोई अच्छे गीत आते हैं ना, प्यारे गीत आते हैं और हमें लगता है हमारे लिए, तो अपने आप के लिए खुद को डेडिकेट कर लिया करो. क्यों रुकना है किसी और के लिए कि somebody else will tell you कि ये ना आपके लिए है. नो, आई एम हैप्पी विद समथिंग, ये मेरे लिए है. सो 31st of July, लास्ट डे ऑफ जुलाई एंड 2026 का जुलाई टाटा बाबाई करके हमें निकल जाएगा. सो किसी का बर्थडे होगा, किसी की एनिवर्सरी होगी, एंड आज का दिन किसी के लिए स्पेशल होगा, किसी के लिए नॉर्मल होगा. लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें आज मनाई जाती हैं. तो आज मनाया जाता है नेशनल एवोकाडो डे, साथ में नेशनल मट डे, वर्ल्ड रेंजर डे, नेशनल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर अप्रिसिएशन डे, ओके, देन लाइफ गार्ड अप्रिसिएशन डे, फिर नेशनल जंप फॉर जेली बीन्स डे. यानी इनके नाम भी बड़े गजब गजब लग रहे हैं मुझे, है ना. एंड नेशनल रास्पबेरी केक डे. नाउ दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग. एक तो पहला है एवोकाडो. नाउ वी एशियंस ना, हमने एवोकाडो के साथ में अपने जो एक्सपेरिमेंट किए, तो हमारे यहाँ पे हम जो एक चटनी बनाते हैं एवोकाडो की, यू डेफिनेटली नीड टू लिसन टू दिस. एवोकाडो, उसके साथ में थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा लहसुन एंड थोड़ी सी ग्रीन चिली, चाहिए तो कोरिएंडर ऐड कर लो. इन सबको घुमा लो मिक्सी में, ओके. उस पर डाल दो थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, नींबू, नमक, चटनी रेडी. और ब्रेड को टोस्ट कर लो और उस पर लगा के खा लो. कल सुबह मुझे याद करना, मंडे जब मैं आऊँगी तब बताना कि एवोकाडो की चटनी कैसे लगी. रिपीट कर दूंगी फिर से, एवोकाडो, उसमें थोड़ा सा जीरा, ग्रीन चिली, लहसुन, कोरिएंडर, मिक्सी में से घुमाओ. उसमें आप थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दो और थोड़ा सा नींबू का रस. नमक तो बनता है ना, नमक तो जाना चाहिए, ठीक है. देखो अभी मैंने कैसे बदला लिया आप सबसे, देखो हो गया ना सलाइवरी ग्लैंड्स एक्टिव. क्योंकि बेसिकली एवोकाडो को ना खुद की टेस्ट नहीं होती है, तो जब आप लहसुन डालते हैं, उसमें गार्लिक डालते हैं, ग्रीन चिली डालते हैं, तो उसकी टेस्ट आ जाती है. अनदर थिंग, सो आज मनाया जाता है रास्पबेरी केक, रास्पबेरी केक डे. फॉर मी माई पर्सनल फेवरेट वुड बी ब्लैक फॉरेस्ट केक, उसके बाद में वॉलनट एंड कॉफ़ी केक, एंड रसमलाई केक. व्हेन आई वेंट टू माई सिस्टर्स प्लेस इन दिसंबर न्यू जर्सी में, मैंने वो रसमलाई केक खाया, तो आई वाज लाइक वाओ, दिस इज समथिंग यूनिक. आपने कुछ ऐसे अलग फ्लेवर के केक खाए हैं मुझे ज़रूर बताना, एंड एवोकाडो की चटनी उसके बारे में भी बताना.
1: Brightening up your weeknights. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For one British pound, you would get 127 Indian rupee and 65 paise. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.

0: Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है, 9:30. इट्स 9:30. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. तुम सा नहीं देखा इस फिल्म से सुनाया आप सभी को ये गीत आशा भोसले एंड मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में. अब ज़रा बात कर लेते हैं अपकमिंग दिवाली में कुछ तो आ रहा है. सो कैच द फर्स्ट झलक ऑफ मच अवेटेड लक्ष्मी देवी सॉन्ग फ्रॉम द अपकमिंग स्टेज म्यूजिकल शो दिवाली स्टोरी. अनुचार्य विल प्ले इट एट 11:30 tomorrow, yani ki Saturday, on Laika Radio, Greater London. The song has been sung by the legend Kavita Krishnamurti with music by Rahul Ranade and lyrics of Sameer Samant. Diwali story, bilkul aap dekh sakenge stage pe. Sunday, 27th of September at OVO Arena, Wembley. Tickets at diwalistory.com. Bada hai interesting hone wala hai ye show. To zarur dekhiyega. Aur hamara Anuj kal Laika Radio pe jab ye गीत आप सबके लिए प्रस्तुत करेगा तो उसे सुनिएगा. और आई एम श्योर आप सबकी उत्सुकता ये देखने के लिए होगी कि दिवाली स्टोरी में ये जो आने वाली है ये इवेंट, स्पेशली व्हेन कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ है, साथ में राहुल रानड़े, ये एक मराठी कंपोज़र हैं, इन्होंने काफ़ी मराठी फिल्मों के लिए भी कंपोज़ किया है, बहुत सुंदर संगीत देती हैं ये गीतों को. तो आई एम एक्साइटेड टू लिसन टू दिस. नेक्स्ट ट्रैक जो आपको सुनाने वाले हम झोली फिल्म से हैं. 1970 में फिल्म रिलीज हुई थी लता मंगेशकर एंड मोहम्मद रफी की आवाज में.
0: ये है लाइका गोल्ड.
3: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल. एवरी वीकेंड 4-7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे.
0: दिस इज अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
4: विजिट travelhubworld.com.
0: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना. परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा. 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में. समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक. नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें. शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 0793027.
5: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
6: विजिट मंत्रा हॉलीडेज .co.uk और कॉल 0203736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर ट्रैवल Mantra.
7: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
8: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
0: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. The sun is out, and so are the summer hits on Like a Gold.

0: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 128.67 इंडियन रुपी, 374.78 पाकिस्तानी रुपी, 453.04 श्रीलंकन रुपी, 166.59 बांग्लादेशी टाका, 88.34 अफगान अफगानी, 174.48 केनियन शिलिंग, 1.34 यूएस डॉलर्स, 63.37 मॉरिशियन रुपी.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LIKA Gold.
0: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £96.67 per gram.
0: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
1: चलिए भाई एक बार आखिरी बार जरा मिला लेते हैं घड़ियां. 9:40, इट्स 9:40. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. गोल्ड नाइट्स हमारी ओवरनाइट सर्विस है, जरूर सुनिएगा लाइका रेडियो 90s वाले बच्चों खुश हो जाओ. लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका गोल्ड 2. तो बहुत सारे रेडियो हम आप सबके लिए लेके आए क्योंकि हमें रेडियो वाले है ना. वीकेंड आ चुका है, आई एम श्योर वीकेंड के आप सभी के कुछ ना कुछ प्लान्स होंगे. ऑब्वियसली मेरे भी कुछ प्लान्स हैं एंड हमने जो ये 5 दिन इतनी अच्छी खासी मेहनत करी है तो वीकेंड पे थोड़ा अपने आप को पैम्पर कीजिए. जैसे कि अभी जो हमने आपको गीत सुनाया था उसमें जिस तरीके से लता मंगेशकर की आवाज़ में जो एक्ट्रेस है उन्होंने कहा होगा छेड़ती है ये हवा, तो ही इज़ आस्किंग तो क्या हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ. कम ऑन इट्स ओके, जस्ट पैम्पर योर सेल्फ, यू नो दैट्स व्हाट यू ऑल डिजर्व. एंड जब बाहर जा रहे हैं तो अपनी केयर लीजिए. अब ऐसा इतना मुझे बोलना नहीं पड़ेगा क्योंकि टेम्परेचर्स अब चेंज हो रहे हैं ना. अब जरा 20s में आ गए तो 30s वाले जब टेम्परेचर आते हैं तो हम सबकी हवाइयाँ कितनी उड़ जाती है ना. हम वी आर डेस्परेटली वेटिंग केयर सेप्टेम्बर वापस आ जाए, बहुत हो गया. देर आर सो मेनी पीपल वेन वी टॉक एंड दे आर लाइक ओ माई गॉड अभी ना ये गर्मी ना हाई हाई गर्मी ओफ ऑफ गर्मी बहुत हो गई. सो अभी अगस्त है यानी कि बच्चों के रिजल्ट्स आने होंगे, उसके बाद स्कूल की एडमिशन्स, उसके बाद में कॉलेज की एडमिशन एंड सितंबर में फिर से हम सब के रूटीन. कहीं घूमने गए हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, अगर यूरोप में घूम रहे हैं तो बहुत ज़्यादा धूप है, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड घर में ही है तो इन्जॉय करते रहिए. मंडे से फ्राइडे द इवनिंग शो विद अश्विनी, 3 घंटे एंड अमेजिंग फीचर्स. पहले आवर आपको सुनाते हैं हम यादों की बारात, इमोशन ऑफ द डे, सेकेंड आवर में गजल या कव्वाली. लेकिन आज हमने कुछ भी नहीं सुनाने वाली, ऐसा हो गया. नहीं, गजल कव्वाली नहीं सुनाएंगे. अगले 2 ट्रैक्स आप सबके लिए लेके आई हूँ मैं. अंदाज फिल्म से एक गीत है एंड उसके बाद में आखिरी गीत होगा आओ प्यार करें. ऑब्वियसली मोहम्मद रफ़ी जी के लिए हमने ट्रिब्यूट किया ये पूरे 3 घंटे. दिस इज़ द लास्ट शो ऑफ 31st July वीकेंड का. कल सुबह हमारा वीकेंड क्रू आएगा तो बिल्कुल तैयार रहिएगा अपने मनोरंजन के लिए. दीप राजे अपने फैंटेस्टिक मजाकिया स्टाइल में प्रेजेंट करते हैं तो उनको सुनिएगा और बाकी भी हमारे प्रेजेंटर्स वो खूब तैयारी करके आएंगे आपके मनोरंजन के लिए. हमेशा की तरह प्यार दो प्यार लो, लाइफ कॉम्प्लिकेटेड ना बनाओ, बड़ी सुंदर है एंड पावर तो किसी को बर्बाद करने के लिए चाहिए. आई एम श्योर आप सब वो नहीं करते. गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर.
0: दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स.
3: This superhit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर।
1: ना तो आज बरसात का मौसम, ना कहीं छाई बदरिया, फिर भी मोरे जिया रम चमके, अरे थम थम कोई बिझुरिया।
2: वाह वाह वाह, तुहार जवाब नाही,

0: ये है लाइका गोल्ड।
1: दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय धुरंधर।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस।
1: मेगा ब्लॉकबस्टर धुरंधर ऑन उत्सव गोल्ड 15th एंड 16th ऑफ अगस्त एट 9 PM।
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान,
4: देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग,
3: डेजर्ट सफारी,
4: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
3: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
4: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
1: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
8: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T&Cs अप्लाई।
9: क्लासिक नगमी आपके अपने लाइका गोल्ड पर।
10: मेरे दिल से

0: है लाइका गोल्ड।
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
2: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
1: डेजर्ट सफारी,
2: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
1: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
2: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
3: साफो ट्रेवल Auto protected.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
7: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
8: Four beers, please, garçon!
7: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
9: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
10: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
9: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
10: And you didn't pay those massive roaming charges?
9: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
11: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100+ countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
12: लाइका गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदा बहार गीत।
13: न झटका ज़ुल्फ़ से

कर कैसा तू दे थांदे वाह फकीरे वाह फकीरे सूट पहन कर कैसा तू दे थांदे कौवा जैसे पंख मयूर का अपने दुम में बांधे अपने दुम में

0: London's favourite Bollywood classics all night. This is Like a Gold.
1: You know how fans shout at football matches?
2: Oh, wake up!
1: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
0: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected. Creative Team Events and Peace Nation UK brings to you the King of Sufi Music, Lakhvinder Vidali, to London and Birmingham. This October, for sponsorship inquiries, call 07959-250-376.
4: This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
5: Classic Nagme, aapke apne Leica Gold par.